0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदा कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो,
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
5: जी हा, 2315-2575-786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

में पेट्रोल 12 रुपया 90 पैसा मांगो करे छो। डीजल जी 80 लीटर अग में 3 रुपया 72 पैसा वाद। पेट्रोल जो नव अघ 358 रुपया 77 पैसा डीजल जो नव अघ 381 रुपया 77 पैसा थी वयो। पेट्रोलियम डिवीजन पारां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिब पेट्रोल डीजल जा नवा अघ 8 सेप्टेम्बर लाइ हूंदा। पाकिस्तान 10 सूबनि सां हमेशह सलामत रहंदो। सिंध जो राजधानी कराची हमेशह वांगुरु मुल्क खे लीड कंदो रहंदो। मुल्क सूबे या शहर ते मेरी नज़र रखंदड़ खे भरपूर जवाब ॾिनो वेंदो। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जो फेरे हाल में सलाम कराची फेस्टिवल तकरीब खे ख़िताब। संदसि चवणु हो त सिंध पाकिस्तान ठाहींदड़ बानी सूबनि में शामिल आहे। मकानी निज़ाम रुगो सिंध में ई मौजूदु आहे। नवनि सूबनि जा इंतज़ामी यूनिट्स जो क़याम क़ौमी असेंबली आहे। हिन मामले ते किथां बि मज़ामत न थियणु घुर्जे। ही फ़ैसिलो वफ़ाक़ समेत सूबनि खे मज़बूत कंदो। दिफ़ा वारे वज़ीर ख़्वाजा आसिफ़ हिकु भेरो ॿीहर नून सूबनि जे नवनि सूबनि जी हिमायत कंदे चयो आहे त जेकॾहिं कंहिंखे बि सूबे जो लफ़्ज़ पसंदि न आहे त इंतज़ामी यूनिट छॾियो वञे। सूबे जे मामले ते सियासी बयान वधाए पेश कया पिया वञनि। इस्लामाबाद खे सूबो ठाहियो पियो वञे त सुठो थींदो। अफ़गाननि बि कमज़ोर हालतुनि बावजूद पंहिंजे मुल्क में 35 सूबा ठाहे छॾिया आहिनि। ख़ैराती मैंडेट ते आयल वफ़ाक़ी वज़ीर अरिड़हीं तरमीम ऐं सूबनि ते ॻाल्हाए रहिया आहिनि। ख़ैराती मैंडेट ऐं फारम 47 ते आयल क़ौम जा फ़ैसिला न कंदा। पहिरीं ई अवाम वटि वञनि, मैंडेट वठनि, पोइ ॻाल्हियूं कनि। क़ौम जा फ़ैसिला फारम 47 वारा न पर अवाम जा चूंडियल नुमाईंदा कंदा। सिंध असेंबली में ॻाल्हाईंदे सीनियर वज़ीर शर्जिलीना मेमण चयो आहे त वफ़ाक़ी वज़ीरनि खे ॻाल्हाइणो आहे त पार्लियामेंट में ॻाल्हाइनि त खेनि जवाब बि मिले। बाक़ी मीडिया ते ॻाल्हाइण सां कुझु न थींदो। वफ़ाक सिंध में 77 सालनि खां हिकु मोटरवे नाहे ठाहियो। सिंध सभिनी खां वधीक गैस पैदा कंदड़ आहे पर घटि गैस मिले थी। बिजली बि सिंध समूरे 10 साल अॻु पंजाब असेंबलीअ मां मंज़ूर कयल ॾखण पंजाब ऐं बावलपुर सूबा ठाहिण बाबति ठहिराउ हाणे बेकार बणिजी चुका। कंहिं असेंबलीअ जे म्याद अंदरि ठाहिण ठहिराउ अमल न थिए त ईंदड़ असेंबली को बि ठहिराउ मंज़ूर करे सघे थी। वज़ीर आज़म जो सलाहकार राणा सनावला जूं निजी टीवीअ सां ॻाल्हियूं। संदसि चवणो हो त नवनि सूबनि बाबति अवामी रेफरेंडम कंहिं वज़ीर बयान न पर पार्लियामेंट जी मंज़ूरीअ सां आइन मुताबिक़ थींदो। मलीर जे इलाइक़े लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन अंदरि फैक्ट्रीअ खे लॻल बाहि ते ज़ाब्तो अची वियो। कूलिंग जो अमल जारी, बाहि सबबि इमारत जो हिकु हिसो किरी पियो। फायर ब्रिगेड इख़्तियारनि जो चवणु आहे त कूलिंग जो अमल हिक खां ॿिनि ॾींहनि ताईं जारी रही सघे थो। कोरंगी नंबर 1 में बस जी टकर में मोटरसाइकिल

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: बुलेटिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10:00 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: रखे हो तो आवाज भी सिंक है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जेकॾहिं तव्हांखे मैदे जी तकलीफ़, सीने जी जलन, खटियूं उघरायूं, बुख न लॻण या बदहज़मीअ जहिड़ा मसाला आहिनि त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफ़ाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी ख़राबी ऐं हाज़मे जे मसालनि लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफ़ाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। शिफ़ाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद ज़िंदगी।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-2575-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की
1: मातली के हो
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: बोरान साहब भेट डे चली अटॉर्नी जनरल के नोटिस जारी हुजने लाइ लार्जर बेंच जोड़ने जो फैसलो अदालती चइनी सूबन जे आईजीज एडवोकेट जनरल्स के भी नोटिस जारी कंदे जाती हैसियत में तलब करे वरतो। दरख्वास्त ते बुध वधीक बुधणी 10 सितंबर ताईं मुलतवी कई वई। वफाकी हुकूमत गुजरियल माली साल में आईपीपीज़ के 29 खरब 35 अरब अदा कया। तवानाई वारे वजारत गुजरियल माली साल में आईपीपीज़ के अदा कयल रकम जा तफ़सील पार्लियामेंट में पेश करे छड़िया। आईपीपीज़ के एनर्जी पेमेंट जी मद में 11 खरब 68 अरब कैपेसिटी पेमेंट जी मद में 15 खरब 58 अरब डिना वया। कराची में केएमसी जे हेड ऑफिस के बाय मेयर जी ऑफिस हड़ी रखती वही। एम ए जिनार रोड ते कायम केएमसी जी ऑफिस के बाय किचन मां लगी बाहे जे नतीजे में मेयर मुर्तजाबाद जी ऑफिस सड़ी रखती वही। फायर ब्रिगेड जे बिन गारिन बाहे ते जाब्तो आंदो बाहे सबब को जानी नुकसान न थियो।

0: सिंध हाई कोर्ट डिफेंस में भाउ भेण ते तशद्दुद में मुलविस जवाबदारनि जी हिफ़ाज़त ज़मानत मंज़ूर करे वरिती। अदालत मरियम अली रज़ा ऐं तैमूर जी ज़मानत मंज़ूर कई। ॿिन्ही जवाबदारनि खे 20,000 रुपियनि जा मचलका जमा कराइण जो हुकुम। जवाबदारनि खे 10 ॾींहनि अंदर लाॻापियल कोर्ट में पेश थियण जी हिदायत। पुलजी स्टेशन भरिसां स्कूल जी इमारत ज़बून हाल। ॻोठाणनि जो एहतजाज। ॻोठ कमाल पंवर जे प्राइमरी स्कूल जी इमारत ज़बून हुजण सबब शागिर्द मैदान ते पढ़ण लॻा। ॻोठाणनि ऐं शागिर्दनि जो चवण आहे त स्कूल जी इमारत डरी पई आहे। चापुर किरण सबब केतिरा ई भेरा शागिर्द ज़ख़्मी थिया आहिनि। नई इमारत ॾिनी वञे। भाउ खोसो विझवाण जा कल हथियारबंदनि गोधो वाह वटि क़ाइम पिकेट पुलिस ड्राहे छॾी। अणॼातल हथियारबंदनि राति जे वक़्तु पुलिस पिकेट खे ड्राहे पट करे छॾियो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदारनि जी सुञाणप ऐं गिरफ़्तारी लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। खेनि गिरफ़्तार कयो वेंदो। यमनी हुसैन जा सऊदी शहरनि ते हमला। 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी। हुसैन सऊदी शहर अबा कुमीस मुश्तेक नजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतिहादी फोर्स मूजिबि हुसैन जे शहरनि ते हमले जो सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमालु करियो ख़ात्माए दर्द कोरस। हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयारु कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाए 2347-3141-200 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं। हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले। पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

वफाकी हुकूमत गुजरियल माली साल में आईपीपीज के 29 अरब 35 अरब अदा कया। तवानाई वारी वजारत गुजरियल माली साल में आईपीपीज के अदा कयल रकम जा तफसील पार्लियामेंट में पेश करे छड़िया। आईपीपीज के एनर्जी पेमेंट की मद में 11 अरब 68 अरब, कैपेसिटी पेमेंट की मद में 15 अरब 65 अरब डिना वया। यमनी हुसैन जा सऊदी शहरन ते हमला, 73 शहरी जख्मी। हुसैन सऊदी शहर अबिया कुमिस मुसीत नौजरान जाजान ते हमला कया। हमलन के नतीजे में औरतन समेत 73 शहरी जख्मी थे। सऊदी इतादी फोर्स मौजूद हुसैन के शहरन ते हमले जो सख्त जवाब दिनो वेंदो। ईरान मुआशी जारियत जारी रहने ते विच ओभर में बहरी जोन कायम करने की धमकी दई छी। ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रजाई है तो अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखे तो रेड सी का ईरानी समुद्र तमरिकी नाकाबंदी तहरी जोन कायम किया वो।

0: गैलन तेल
1: आप सुन रहे थे जीएफ

0: छावा पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
0: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन।
0: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
0: 0331252576।
1: जी हा 2315525786।
0: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

जी जी क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कलाम जो कि आप लोगों के समातों के नजर था। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा प्रोग्राम सुना जा रहा है। सखे मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली मटियारी 92 नूरियाबाद और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जरा आप लोगों के साथ बातें की जाएंगी और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानेंगे कि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप क्यों और कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो वो तो बताएंगे। लेकिन साथ साथ अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो वो क्या तरीकेकार होंगे जो आप फॉलो करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं वो बताएंगे। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट सी बातें बताने के लिए वो ये कि भाई आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम की अगर टॉपिक की बात की जाए तो आज मेरा ऐसे ही दिल कर रहा था कि आप लोगों से ऐसे ही ये वाला सवाल पूछूं। हाँ जी, तो आज के प्रोग्राम का सवाल कुछ इस तरह होने वाला है कि आपने मुझे बताना है कि जब आप अपनी स्किन केयर के लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उस ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर सबसे पहले क्या चेक करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि आप लोग सबसे पहले अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना वो चेक करते हैं। हाँ जी, ये आप मुझे बताएं, क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है वो प्रोडक्ट को ना चेक करके परचेज करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बिना चेक किए ना प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं और उस वजह से ये भी सीन हो जाता है। अच्छा नहीं, ये सारे सीन मैं क्यों बताऊं आप लोगों को, आप मुझे बताएंगे कि आपके साथ क्या क्या हो जाता है जब आप बिना देखे कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज कर देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा जल्दी से। और आप मुझे ये बताइए कि जब आप कोई ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करने लगते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर आप क्या चेक करते हैं। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, पहली मरतबा सुन रहे हैं, रोजाना सुनते हैं या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं, तो जनाब अपनी खामोशी को तोड़ लीजिए और ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर। और जी बात यहीं पर खत्म नहीं होती, अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब, आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा। जल्दी से हमारे पेज के ऊपर आइए, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आप लाइक करेंगे, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, हमें बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं ये भी बताइएगा। और उसके अलावा मुझे ये भी बताइएगा कि आप में से कितने सारे लोग हैं जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर चुके हैं या फिर इतने सारे लोग हैं जो कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया गया है जो कि सबसे पहली बात तो ये है जनाब कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है। और मेडिकेटेड फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है जनाब कि जो आपकी स्किन के डॉक्टर्स होते हैं ना वो उनकी निगरानी के अंदर प्रोडक्ट तैयार किया गया है। अगर आपको ये लगता है कि भाई ये जो नाइट क्रीमें होती हैं, ब्यूटी क्रीमें होती हैं, इनके अंदर भर भर के केमिकल डाले जाते हैं, हमारी स्किन खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई भी सी नहीं होगा, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार गया प्रोडक्ट है और इसके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है और ये जनाब आपको ऐसा निखार देने वाले हैं कि जब आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम तो आपको ऐसी खूबसूरती मिलेगी जो कि आप महंगे महंगे से फेशियल्स कराते हैं ना तब भी आपको नहीं मिलते। तो अगर आप बचना चाहते हैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने से या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप भाई बैठकर घंटों अपनी स्किन केयर करते रहें, तो उससे कई गुना बेहतर है कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर लें और अपना वक्त भी बचाएं, पैसा भी बचाएं और अपनी खूबसूरती को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। तो जल्दी से डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, बाकी बहुत ज्यादा बातें हैं जो आप लोगों के साथ ना मैं करती रहूंगी। पूरा प्रोग्राम भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को डेडिकेट किया जा रहा है। अगर आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाते जाइए, आप जनता है मुझे पता होना चाहिए। और जी आप मुझे बताने वाले हैं कि जब आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर आप सबसे पहले क्या देखते हैं। ओके जी, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर तो इतनी खूबसूरत डॉक्टर की फोटो लगी हुई है, तो मुझे लगता है कि जब भी कोई डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज करेगा ना तो उसकी डायरेक्ट जो नजरें हैं ना वो इस डॉक्टर की तरफ जाएगी, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत हो चुकी है, क्या पता ये भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाती हो। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए ताकि आपको भी वो वाली खूबसूरती मिले जो कि आप हमेशा से हासिल करना चाहते हैं। ओके जी बिल्कुल, यहाँ पर आपके मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, मैसेजेस भी आप हमें कर सकते हैं, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और इस तरीके कार को फॉलो करके आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए,
और जो आज हमारे साथ नए नए लोग कनेक्ट हो चुके हैं और नए नए लोगों को भी वेलकम करते हैं। नए नए लोग भी हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करें। भाई अपनी पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये पोस्ट मेरी नहीं, ये आप लोगों की पोस्ट है। तो जल्दी से अपनी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाएंगे भाई आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम। और बाकी जो लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करने में कंजूसियां करते हैं ना, ऐसा ना किया करें भाई, ऐसा नहीं किया करें, पोस्ट को लाइक और शेयर किया करें। ऐसे ये होता है कि बहुत सारे लोगों तक हमारी पोस्ट जो ना वो पहुंच पाती है। तो पोस्ट को पहुंचाइए जितने भी लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हैं। बाकी मेरे पास एक प्यारा सा गाना है, गाना भी साथ साथ सुनते हैं। आप क्या कह रहे हैं, आपके फीडबैक्स की जाने भी आते हैं।

आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। ओके जी, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए, खूबसूरती को जरा वेलकम कीजिए। अच्छा, यहाँ पर शेर खान जतोई हमारे साथ हैं, बको देरो बागरानी से कहते हैं अबूजर जतोई और समीना जतोई और शांजी जतोई अदी की आए हो सदरा माँ ठीक है कहाँ बुधा की सफा ठीक ठाक मजे में और शिराज अली मला हमारे साथ है पुरानो। ओके, आपका ये मेरे ख्याल में गांव है। कहते हैं सलाम जी, हमें फायजा का गाना तो सुनाइएगा, डेडिकेट आशिक अली मल्हा रहमान मल्हा के नाम। ओके जी, ओके आई ट्राई। और शहजाद अली राजपर हमारे साथ है फ्रॉम बसीरो तालका फेजगंज, प्रोग्राम इज वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच शहजाद, आपको वेलकम कहा जाता है। और महबूब अली मोरो सिटी से हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। FM प्रोग्राम की रानी सिद्रा मुस्कान, वेलकम, क्या हाल चाल है आपका सिस्टर? जब आप प्रोग्राम स्टार्ट करती हैं बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों, और जब आप प्रोग्राम करती हैं और हंसती हैं और ओहो बोलती हैं, क्या ही बात है, और हंसते हंसते जलाल को तो प्ले करो, सो नाइस ऑफ यू सिद्रा मुस्कान, हमेशा गुलाब के गुल की तरह खिलती और मुस्कुराती रहो। ओके जी, आप भाइयों की दुआएं हैं जी, बहुत शुक्रिया। वैसे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम कब इस्तेमाल कर रहे हैं? और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आपके करीबी जनरल स्टोर पर नहीं अवेलेबल तो मैं प्रोग्राम में आपको नंबर बता दी रहूंगी जिनके ऊपर आप रब्ता करके अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल भी करा सकते हैं। क्या बात है। ओके जी, अनवर अली भाई हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, तपती हुई धूप में एक ठंडी सी हवा हो हमारी तरफ से आपको दोपहर का सलाम हो। और सूरज की तपश है तेज और चलती है गर्म हवा, खुश रहे आप सदा, दिल से है ये दुआ। चमकती धूप में अपनों का ख्याल आता है, दोपहर का ये सलाम मोहब्बत का पैगाम लाता है। तपती हुई राहों में छांव का एहसास हो आप, दोपहर के इस लम्हे में भी सलामत हो आप। क्या मतलब, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम कहते हमारे प्यारे अनवर भाई जान। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में बताएं, इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं? जवार मोहम्मद बचल शंपानी भाई हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया भाई लाइक भी कर दिया करें, ये भी आप लोगों का काम होता है। और यासीन खंड हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। मटियारी का तवा से प्रोग्राम ज्वाइन करवाए, प्रोग्राम तवाके पसंद अच्छी पड़े तो थैंक यू मोहब्बतू एंड भावनजू। यासीन कहते नहीं लखरोड में हूँ, नहीं कराची में हूँ, अभी तो मैंने थर वसाया है, थर क्यों वसाया है आपने? और मुझे बताएं आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो गई या फिर अभी तक रहती है? क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मुझे ये लगता है कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अवेलेबल होगी तो आपको परचेज करने में आसानी हो सकती है। तो कैसे आप अवेलेबल करा सकते हैं, मैं जरा वापस आकर आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टाइम हुआ जाता है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक ली जाए, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए पूरी पूरे 3 बजे तक। मैं सरा यूं जा कर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस ने जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध की आवाज
1: सोना लाया है NPS तीन की ताकत के साथ इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे तीन की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फार्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो दी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

क्या बात है, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मिरपुर खास मटियारी सकरेन मेहरापुर मातिली 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप लोगों के साथ मौजूद है और प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। तो आज हम बात कर रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप ऐसा है कि भाई पहले जान लें उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू किया करें। वैसे भी मैं ये बात हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करें ये हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आप लोगों को तभी मिलेगी जब आप हमारे प्रोग्राम में शामिल प्रोग्राम रहेंगे और आपको पता होगा कि भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये हमें फायदे मिलने वाले हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए सबसे बेहतरीन बात तो बिल्कुल ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक मेडिकेटेड फार्मूला है और मेडिकेटेड फार्मूला जो होता है वो जाहिर सी बातें उसे हर स्किन के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, कॉम्बिनेशन टाइप हो, हर स्किन के ऊपर आराम से आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ साथ मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों के साथ जरा शेयर कर दें कि अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो वो कैसे कराएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल होनी चाहिए तो आपने जल्दी से डायल करना है 03-12-50-25-907 बुड़ी 312 पंजाब 25-970 आई बियो नंबर आहे 03-27-38-43-90 बुड़ी 332 73-84-309 ही नंबर साइन जी तुम डायल करे पांजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल कराए सगो था अवेलेबल करायो जेका मालूमात वठनी आ वठो अनन के बुधायो बाबा साईं फलानी जगह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव अगर मिले न थी त असा परचेज किया कंदासी असा इस्तेमाल किया कंदासी बाबा हते अवेलेबल करायो जे असा इस्तेमाल करी सगो आई असान से भी एरिया में मिले आई असा के वठण में आसानी थी वने या वरी तमाजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल हुंदी त ताके पाण ही गाइड कयो विंदो त बाबा ता फलानी जनरल स्टोर ते हल्या वयो ताके उते आराम डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली वेंदी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो नालो वठी करी तमा तलब कंदा अगर तमा मन्या था दुकान ते आई दुकानदार तमा के चवे थो त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम त कोने का पर हीय क्रीम आ डाडी जे कर हले थी ता वठी वणो हीय उ जे दुकानदार अक्सर मानन के चूनो लगाईंदा है पर तमा इनन सीजन खा बची रहजो तमा के छा कणो आहे तमा न भा के न ही नंबर दई अच जो चे जो दुकानदार अदा ही नंबर ते राबतो करे पांजे दुकान ते जल्दी में डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अवेलेबल करा असा सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाके अवेलेबल कराने खां पोए तमा वनी उता आराम सा वठी जो डी स्किन ब्यूटी क्रीम ठीक आहे। सो यहां तक गाल थी वे ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा की परचेज कंदा आई की तमा अवेलेबल कराईंदा पर तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम छो इस्तेमाल कंदा हाने इन तरफ अचूं था बिल्कुल जी। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के बहुत सारे जो है ना वो वजूहात में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम मेरी तो भाई फेवरेट क्रीम है यकीन जाने क्योंकि मेडिकेटेड फार्मूले के साथ तैयार की गई है। तो उन लोगों के लिए तो भाई ये ऐसा समझ लें कि वरदान की तरह ही साबित होगी जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है वो कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं चेहरे पर और वो हमेशा परेशान रहते हैं। वैसे भी अभी शादियों का सीजन चल रहा है तो मुझसे भी तकरीबन लोग पूछते हैं कि भाई आप बताएं हम कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें शादियों का सीजन है हमारे घर में शादियां हो रही हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास कोई अच्छा कोई सेफ प्रोडक्ट होना चाहिए जो लगाएं आप तो आपको खूबसूरती भी मिले और आपकी स्किन की हिफाजत भी होती रहे तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर विटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है। और जनाब इसका क्या काम होता है, ये इनका काम होता है कि जब आप अपने चेहरे पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो विटामिन ई बीड्स हैं और माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन है वो आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं, आपकी स्किन की इस तरह हिफाजत करते हैं, आपके चेहरे को निखार देते हैं और ऐसा आपके चेहरे
चेहरे पर निखार आएगा जो कि आप लोगों को महंगे महंगे फेशियल से भी नहीं आता। तो जो खवातीन हमें सुन रही हैं या फिर मर्द हजरात हमें सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप खवातीन ही इस्तेमाल करेंगे, भाईजान इसे आप लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लड़के भी लगाइए, एजड लोग जो है वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा उम्र हो जाती है तो आपके चेहरे पर ज्यादा रिंकल्स भी आ जाते हैं। तो रिंकल्स को खत्म करने के लिए भी आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए अपनी रोजमर्रा की रूटीन में आपने शामिल करना है जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन के रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह से जो ना वो मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपकी शख्सियत में जो ना वो ताजगी और एतमाद का एहसास भी पैदा हो जाएगा। तो फिर आप अपनी रोजमर्रा की ब्यूटी के रूटीन में इस्तेमाल कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को लगाने के तरीकेकार बिल्कुल आसान से है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ मार्केट में डी स्किन फेस वॉश भी अवेलेबल है। अगर आप अच्छा सा फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन का फेस वॉश आप लगा सकते हैं। अगर आप मार्केट जाएं तो डी स्किन का फेस वॉश भी आप मालूम कराइएगा, परचेज करिएगा, उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप परचेज करके आ रहे हैं तो सबसे पहले रात के टाइम आप अपना फेस वॉश कीजिए, डी स्किन फेस वॉश से अपना फेस वॉश कीजिए, अच्छे से चेहरे को क्लीन कीजिए, उसके बाद सुखाने के बाद आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम रात के टाइम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए। आराम से लगाइए, प्यार से लगाइए, मोहब्बत से लगाइए, ताकि भाई आपके चेहरे पर जो निखार आए, रिजल्ट्स आए, वो भी मोहब्बत के साथ आए। तो कहते हैं ना, मोहब्बत अगर आप किसी भी चीज में शामिल करते हैं, चाहे खाने में हो या फिर प्रोडक्ट लगाने में हो, तो मोहब्बत का असर बिल्कुल होता है। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएं तो मोहब्बत से लगाइएगा, ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे मिले। और इसी तरीके कार को जब आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन जाने आपको बहुत अच्छे वाले रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और यही बात है कि आप हमारी पोस्ट को लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो क्या करें भाई, कौन से पैसे लगते हैं। पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको गाने सुनाऊंगी, लेकिन हाँ, मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है वो भी जरा दोबारा आप लोगों को बताते जिन लोगों ने अभी अभी सुनना स्टार्ट किया है। तो आज के प्रोग्राम का मैंने आप लोगों से सवाल पूछा है कि आप मुझे बताएं कि अगर आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उससे सबसे पहले आप उस प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज चेक करते हैं। ऐसी क्या आपकी आदत है कि आप कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कौन सी चीज सबसे पहले आप देखते हैं, नोटिस करते हैं, ये आज हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है। और आप हमें 888 और फेसबुक पर ज्वाइन करेंगे। अब आप ये बोलेंगे कि सिद्रा आप कितना ज्यादा बोलती हैं जो कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि हाँ, वाकई में बहुत ज्यादा बोलती हूँ। चलें फिर बातों को जरा ब्रेक लगाते हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा सा गाना लगाते हैं और गाना साथ साथ सुनते रहेंगे। और आप लोग क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, आप ऐसा कीजिए, जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल की नहीं, या फिर सिर्फ आप सुनने वाले और घुनने वाले लिसनर से मत करिए ऐसा। जल्दी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और बताइए आप हमें कहाँ से सुन रहे हैं और वहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है या फिर अभी पेंडिंग है।

0: अच्छा मेरो त लाइ छा छ चे तो पर जको सडी दुनिया है ना बिल्कुल या गाल समझ में जे दी सडी दुनिया में डठो वने द डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो वने पियो तमा के लगन होतो तो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम सिर्फ पाकिस्तान में यूज कई वेंदी है पर ई बिल्कुल भी ना है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम एतरो जबरदस्त प्रोडक्ट है कि बाहरी मुल्कन में मानो बे इस्तेमाल कन पया आई बाहरी मुल्कन में भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले पई वहां के अगर तमा वेंदा गाडे भी घुमण बाहरी मुल्क तो तहां उते भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी सको था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमा सबनी के बुधाय बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन आहे आई तहां वेंदा त तमा के आराम से मिली वेंदी। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तमा जे गोठन में तमा जे के भी सिटी में रहला आया ना था तो तहां पान भी अवेलेबल कराए सको था। ओके जी सो अचूं था तमा जे मैसेज दी तरफ आई मैसेज खोड सारा तमा जा जमा थी चुका है सो हते असा के ज्वाइन कयो है अखलाक बलोच भाई कहते आंसर डेट देखते हैं क्या बात है जी क्या बात है। और मोहम्मद अली खोसो हमें सुन रहे थे प्रोग्राम खूबसूरत है आपका सलाम अयूब भट्टी और बाबल खोसो को दीजिएगा। ओके जी और यासीन कहते हैं हम गरीबों को शमन मिराली का गाना लाजमी सुना देना बिल्कुल जी सुनाएंगे आप तसल्ली रखिए। और फहीम शेख हमारे साथ कहते हैं सलाम याली मदद मुलाल इस्लाम मदद इन वालेकुम असलाम कहते अदा छा हाल आई खुश आयो सफा चाक स्लेट कलम सब सब तां बुधायो। और इन खां अलावा हिदायतुल्ला कहते हैं अस्सलाम वालेकुम कैसी हो मुस्कान ये सॉन्ग चलाना आपका गाना यकीन करें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तो थोड़ा इसका ना वजाहत के साथ लिखिए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहते हैं फिर आपका गाना लगा देंगे। और रमजान अली हमें सुन रहे कहते हैं सलाम बेना कैसी ये शो में आपको वेलकम कहते हैं सॉन्ग सुनाए प्लीज वाहिद बख्श की आवाज में मां कोशिश क्या थी तमाम भाईरन जो गाना जो फरमाइश ना उन्होंने लगायूं था ठीक है। और अखलाक भाई कहते हैं कि हाँ पहले हम मरे हुए थे फिर आप आई फिर हम जिंदा हो गए ना करें
1: इसका है बच्चा अन्ना पन्ना सजी दुनिया अन्ना पन्ना सजी दुनिया।
0: अच्छा यासीन खान डी स्किन का फेस वॉश अवेलेबल है मार्केट में तो आप डी स्किन का फेस वॉश परचेज कर सकते हैं। और फहीम कहते हैं भाऊ कराची क्लिफ्टन से आपका शो सुन रहा हूँ लारकाना की चिंचियाँ आप देखो मैं तो रोज ही देखती हूँ और इतना देख चुकी हूँ कि बड़ी बेजार हो चुकी हूँ। अच्छा उनका अलावा महर इरफान सियाल साहब भी सुन रहे हैं कहते हैं ग्रेट हॉस्टिंग में मार्जी थैंक यू वेरी मच हमारे सर आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा जी बख्तली सियाल भाई हमारे साथ हैं आपको भी प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और शहबाज हमें सुन रहे हैं हाय जी हेलो। और जिन लोगों ने पोस्ट को लाइक नहीं किया जल्दी से कर दें लाइक करने में कौन से आपके पैसे जाएंगे। अच्छा ये फरवा गुल हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम गुड आफ्टरनून हैव अ नाइस डे अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे थैंक यू वेरी मच फरवा कहती है टॉपिक पहले क्रीम का नाम चेक करती हूँ। अच्छा ये अच्छी बात है अच्छी बात है। अच्छा फहीम भाई लिखते हैं कि बिना दिल जिया सी तो छा थी पयो थी पत्थर वया सी तो छा थी पयो जडे खिल खुशी मोकलाए वही झुकिया सी झुड़िया सी तो छा थी पयो। अच्छा थोड़ो जो अगते जेका लाइन है ना वो थोड़ा चवंदा आहिनि त यार न पढ़ो इन करे न पढ़ंदासीं। सो थैंक यू सो मच प्यारा भाउ तव्हां सां गॾु मौजूद आहियो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं इस्तेमाल कंदा ॿुधायो त वरी चओ था दादा डी स्किन ब्यूटी क्रीम कराची क्लिफ्टन में कहां मिलेगी अब ये आप वहां जाइए मालूमात लीजिए कहां कहां पर अवेलेबल है अगर नहीं मिल रही तो जो नंबर आपको बता रही हूं ना उनके ऊपर रابطہ कीजिएगा।

परवाह की थी। यहाँ पे ये पोइट्री है, मोहब्बत की सजा कुछ यूँ मिली हमको, खुद से बिखर कर भी तेरे ही रहे हम। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। और अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, अब्दुल रजाक मोहम्मद खान कुंभर मुश्ताक कुंभर हली पोटो स्टाफ खान तासा के ज्वाइन कयो आहे, सो मोहब्बतूं आहिनि तव्हां जूं। और जी मुजाहिद राजस्थानी हमारे साथ ये थे, माशाल्लाह यू शो, थैंक यू। बिल्कुल जी, तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे सघो था, डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां खे मुनासिब क़ीमतुनि में मिली रही आहे। डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां इस्तेमाल कयो पिया त असां सां शेयर कयो। बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा ॻाल्हि बि आहे, अगरि तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था, जी फरवा असांखे चयो त मां जॾहिं प्रोडक्ट परचेज कंदी आहियां त मां हुन जो नालो ॾिसंदी आहियां, त बिल्कुल जॾहिं तव्हां कोई बि प्रोडक्ट परचेज कंदा त तव्हां यकीन, मूंखे त यकीन ई लॻंदो आहे त तव्हां हुन प्रोडक्ट ते जेको मॉडल जो फोटो हूंदो आहे न उहो ॾिसंदा हूंदा। पर तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करण वञो था ऐं तव्हां ॾिसंदा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे जेको डबी आहे न उन ते हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो आहे, ऐं इहा बि हिकिड़ी निशानी तौर मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां थी, अगरि तव्हां दुकानदार खां वठो त हू तव्हांखे जहिड़ी तहिड़ी क्रीम न पकड़ाए सघे। तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी नॉलेज हुजे त बाबा असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण वञूं था त कहिड़ी आहे, कीअं आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम। त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे डबी ते हिकु डॉक्टर माइक जो फोटो लॻियल आहे, ऐं हिन मां इहा ॻाल्हि साबित थिए थी त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे ही बाबा मेडिकेटेड फार्मूलो आहे। दिलि खोले इस्तेमाल कयो, कोई साइड इफेक्ट न आहे, तव्हां मर्द मायूं सभी लॻाए सघो था।

गोठानी छोरी पूरे वही दिल जो करार आय हाय। अच्छा अब्दुल रजाक कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आया हूँ मीरपुर खास काम मुश्ताक कुंभर इस्तेमाल करे पयो रिजल्ट बेहतरीन अचे पयो वधी सिदरा वाह साईं वाह मोहब्बतूं आइन भाईरन जूं। और फहीम भाई कहते हैं भाऊ टॉपिक डेट चेक करते हैं एक्सपायर तो नहीं है बहुत अच्छा करते हैं। और दादाला कहते हैं डब्बा देखता हूँ सबसे पहले डब्बे पे क्या देखते हैं वो ही बताना था।

जी खूबसूरती जो कमाल है खूबसूरती तमाके तने मिलंदी जदी तमा डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिसंदा। ओके जी यहां पर हमारे साथ ही हमारी फजली कहती है अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम माय स्वीट बेस्ड आरजे सिस्टर सिद्रा मुस्कान, कैसी हो डियर शहजादी? बिल्कुल ठीक हूं, तुम बताओ कैसी हो? कहती सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम इन कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को। ऐसा वैसे तुम्हें क्यों लग रहा है बताओ मुझे जल्दी जल्दी। अच्छा अब्बास महर हमें सुन रहे हैं। अब्बास महर आपको वेलकम कहा जाता है, थैंक यू के साथ आप हमारे साथ हैं। और गोट गुलाब लगा रही, खान साबिर लगा रही, सुल्तान लगा रही, रिजवान लगा रही, वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम कहते हैं शो में, कहते हैं आपका शो बहुत नाइस है। और सुरिया सुमरो का आपने गाना बोला है जो कि हम लगाने की कोशिश करेंगे। मजर अली तुनियो हमें सुन रहे थे, अदी सिद्रा सॉन्ग बिल्कुल आपका गाना भी लगाते हैं। और हमारे साथ है रूबी अली एंड नंडो जमीर अली राजपर फ्रॉम बसीरो। अदी सिद्रा हम आपका प्रोग्राम शौक से सुनते हैं, आज प्ले मुनवर मोलाई हथ मथे क्यासी दाढ़ूआ। ओके जी ओके बिल्कुल तांजी पसंद जो गानो हलायूं था। और कश्मीर से अखलाक भाई तमाम भी गाने जी फरमाइश कई है आई छाता चो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आहे। बिल्कुल जी डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइस आहे आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमाचे घर में केर केर इस्तेमाल करी पयो या केर चाहे तो बाबा मुके वठी आने दियो तो कुछ खवातीन एडी हुंदा जेके बाबा मार्केट न वनी सगंदियो आ उनन के वरी थोड़ो इलाज करनो पंदो आए घर जे मर्दन के। अगर तांजू भेनर तांजू वाइस आई तवांजू अमड़ी तवां के चवन तो बाबा असा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी आने दियो तो उनके वठी आने देजो ये नखरा न कंदा कयो। तो जगह जगह असा के बुधन पया सब मानो तहां पांजे घर में सबनीन के डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी दो एंड डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे देसो तवां के यकीनन डाडी पसंद इंदी। ओके जी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो कमाल आए इलाही सारा कमाल आता है बिल्कुल सभी प्रोग्रामों में तांके बुधाईंदा रहंदासी पर टाइम थे आही वेठूं था बाबा न्यूज ब्रेक उनका पोई शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हुंदा वापसी जल्दी मोटी तमा नींदासी तमा कारी नवन जो इते वेठा हुजो मां ओही वनी ओही मोटा सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाइटेशन डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरत हो जाइए।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: व्यापारी मीर रजा केस जी अदालती जांच जारी। वकील जिब्रान नासिर जे सवालन ते एडवोकेट जनरल जी मुदाखलत। कमीशन एडवोकेट जनरल जी मुदाखलत ते वरु वजीर जाल लंजार के नोटिस जारी करण जी हिदायत करे छड़ी। कमीशन सरबराह जस्टिस उमर सियाल एडवोकेट जनरल के मुखातिब थींदे चयो त सिंध हुकूमत तरफां अवां छो परेशान आयो। फरहान डालपुर चयो त खानदान के मुतमिन करण लाइ अदालती कमीशन जोड़ियो वञे। जेकॾहिं खानदान जा कुझु सवाल आहिनि वकील ज़रिए पुछण चाहिनि था त अवां

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे वो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: Setting up free of cost medical facilities and health infrastructure all across the province, which include 8 SICH units.
3: सिंध भर में नौजायदा और मासूम बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता अस्पतालों के एक बेमिसाल नेटवर्क का कायम। 3.5 साल की कलील मुद्दत में कोरंगी नंबर 5, आजम बस्ती कराची, सखर और जाम शोरों में कायम किए गए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ एंड नेनेटोलॉजी अस्पतालों के साथ जिना अस्पताल कराची, सोबराज अस्पताल कराची, शहीद बेनजीराबाद अस्पताल और लाड़काना अस्पताल में कायम किए गए SICHN यूनिट्स में मजमुई तौर पर 12 लाख से ज्यादा बच्चों का इलाज किया गया है। इन अस्पतालों में 262 इंक्यूबेटर्स, 269 वेंटिलेटर्स के साथ न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट, रिहैबिलिटेशन यूनिट, न्यूरोलॉजी और जर्नल वार्ड कायम किए गए हैं।
4: बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल हैं और हम पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बना रहे हैं। खिदमत में सबसे आगे हुकूमत सिंध।
5: अमा जो गाड़ी खरीद करण जो इरादो है
6: या पंजी पुरानी गाड़ी विकड़न चाहियो था तपोए अचो बालाज मोटर्स मोरो ते
5: जिते तमा के मिलन थियो टोयोटा सुजुकी होंडा
6: किया स्पोर्टेज एई बियन कंपनी जो मुख्तलिफ गाड़ियों जिन में जापानी इंपोर्टेड एई हाइब्रिड गाड़ियों पिन शामिल आहिन।
5: तमा जी पसंद जरूरत एई बजट मुताबिक गाड़ी जी चूंड में बेहतरीन सहकार
6: बालाज मोटर्स मोरो ते हर किस्म जी गाड़ियों जी खरीद एई विक्रो जी सहूलत मौजूद आहे मुनासिब अघन एई बेहतरीन डील सा।
5: इनका अलावा पूरे पाकिस्तान में अमा जिते भी हुजो पैजी गाड़ी बुक कराए सको था।
6: बालाज मोटर्स नस्त गार्डन सिटी दादू रोड मोरो प्रोप्राइटर अली बख्श खासकेली अजी राबतो करियो 03002963322।
7: खुशखबरी डॉक्टर जमशेद अबरो दंदने वात जे बीमारिन जो माहिर सर्जन एडिशनल चीफ डेंटल सर्जन चांडका मेडिकल कॉलेज ए हॉस्पिटल लाड़काणो 32 सालन जो तजुर्बो रखंदड़ 32 सालन खां बाकरानी रोड वारी डेंटल क्लिनिक ते मरीजन जी खिदमत कंदड़ डॉक्टर साहब हर किस्म जा जदीद दंद लगाइन था दंदन वात जे सभिनी बीमारिन जो बेहतरीन इलाज कंदा आहिन। डॉक्टर जमशेद अबड़ो दंदन वात जे बीमारिन जो माहिर सर्जन याद रखंदा डॉक्टर साहब बाकरानी रोड वारी डेंटल क्लिनिक खां शिफ्ट थी नई डेंटल क्लिनिक ते मरीजन जो मुआइनो इलाज करे रहा आहिन। एड्रेस जमशेद डेंटल क्लिनिक SP चौक शाहनवाज लाइब्रेरी खां अगते साम्हूं सुभानला होटल रेलवे पुल चढ़ण खां पहिरीं खबे पासे क्रिश्चन चर्च जी लाइन जमशेद डेंटल क्लिनिक लाड़काणो राबते अपॉइंटमेंट लाइ 03013471717 and 0333-296-3867।
6: हर चेहरो पंहिंजी अलग सुञाणप रखे थो हर सुञाणप के घुर्जे खास ख्याल एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम कंबाइंड वाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट क्रीम सांगड अवां जी रोजानी स्किन केयर रूटीन जो हिस्सो नरमी जो एहसास ताजगी जो एतमाद केयर जेका हर डी अवां सा गड हुजे एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जो एतमाद हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाए एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम सांगड एक्सपोर्ट ब्यूटी सोप जरूर इस्तेमाल कंदा। शहर जे हर मेडिकल स्टोर जनरल स्टोर ते दस्तियाब आहे। हेल्पलाइन नंबर 03141705558।
8: अदा छा गाल हा डाडो परेशान पियो लगी
9: भाऊ छा कया बिन सालन खां अमड़ पथरीन जे मर्ज में मुब्तला आहे डॉक्टर ऑपरेशन जो चवन था गरी फीस जो बुधी हर दफे मायूस थी मोटी इंदो आहा।
8: भाऊ मायूस न थी अज मां तोखे अल्लाह वारन इंसानन जो दस थो जा जिन पंहिंजे अमड़ जे नाले ते हिकु खैराती इदारो ममताज वेलफेयर खोलियो आहे जंहिं में मरीजन जी चकास ऑपरेशन मुफ्त में कनि था।
9: जी हाँ बा अखलाक बा किरदार इंसान दोस्त आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी संदस घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी MBBS FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री अल्लाह पाक जी राह में वक्फ करे छड़ी आहे। इते गुर्दे मसाने में पथरी कैंसर इन्फेक्शन पेशाब में जलन रुकावट बेओलादी गुदूद जो ऑपरेशन जदीद औजारन मशीनन सा लेजर जरिए इंडोस्कोपिक ओपन ऑपरेशन किया वे तो याद रखा रोजानो।

0: उकास ऐं अल्ट्रासाउंड फ्रीअ में कयो वञे थो, जंहिं में ऑपरेशन जे केस जी फीस नाहे वरिती वेंदी। बस ऑपरेशन जो ॿियो थोरो ख़र्च, मसलन दवाउनि ऐं कमरे जी फीस मरीज़ पाण ॾींदा। डॉक्टर साजिद अब्बासी ऐं डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी, वेहण जो हंधु मुमताज़ वेलफेयर क्लिनिक, अलनिसा मेडिकल सेंटर, सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी, मोबाइल नंबर 0334224168 69। अनीसा, ख़ैर त आहे? मंडकाए थो घुमे, धकु लॻो अथई छा?
1: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हॾो भॼी पियो आहे। तोखे त ख़बर आहे ग़रीबी हाल आहे, पैसा बि कोन्हनि के। सोचियां थो ऑपरेशन किथां करायां।
0: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफ़ा ऑपरेशन मुफ़्त करे थो, ऐं इलाज बि अहिड़ो सुठो थो करे जो ठीक बि जल्दी थी वेंदे। ग़रीब तोड़े अमीर लाइ ख़ुशख़बरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी, MBBS, FCPS, आर्थो, हॾन ऐं जोड़न जो माहिर सर्जन, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल, लाड़काणो। हिते रोज़ानो हॾन ऐं जोड़न जे मरीज़नि जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो, जंहिं में रोज़ानो चकास मुफ़्त, रिपोर्टूं 40% फ्री, एक्स-रे 40% फ्री, ऐं ऑपरेशन में डॉक्टर जी का बि फी न आहे। असां वटि हॾन ऐं जोड़न जो सूर, संदनि जो सूर, कुन रग जो सूर, यूरिक एसिड, चेल जो सूर, शुगर जा फट, हथनि पेरनि जो सुन थियण, पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरनि जो इलाज, ऐं भगल हॾन जो ऑपरेशन बहितरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस, कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां राति जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं, ऐं छंछर ते क्लिनिक।
2: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GA FM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।
4: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी, ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद, अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट, अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस, अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस, टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GA FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GA FM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
7: जी हा, 2331-25-25-786।
8: GA FM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।
3: हाय हाय हाय।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

और जब आप हमारा पेज सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाएगा, वहाँ पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट भी मिल जाएगी। तो जल्दी से हमारी पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। ओके जी, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करना ये आप लोगों का काम होता है, कमेंट भी आप कर दिया करें, क्या ही हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से सुन रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। अच्छा भाई, तो आपके कुछ मैसेजेस की जानब आ जाते हैं जो कि काफी तादाद में जमा हो चुके हैं। आपके मैसेजेस अगर कमेंट्स की जानब आते हैं

अच्छा यासीन खान, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, आप इतने टाइम से हमारे साथ मौजूद हैं। और फहीम कहते हैं कि भाऊ संडे वाले दिन हमारे ऑफिस जो है ना वो बंद होते हैं, फिर जाऊंगा विजिट करूंगा कहाँ मिलती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम और मैं डी स्किन का फेस वॉश खरीद करूंगा। चलें जी, आप मालूमात लीजिएगा वहां पर है तो फिर आप परचेज कीजिएगा, चाहे आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेज करें या फिर डी स्किन फेस वॉश परचेज करें। वैसे अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम नहीं इस्तेमाल कर पाए तो आप किसी को तोहफा दे सकते हैं, समझ रहे तो किसी को गिफ्ट कर दीजिएगा। अच्छा मुगल उमरानी हमें सुन रहे हैं, मुगल उमरानी आपको वेलकम कहते हैं, थैंक यू सो मच। और वजीर हमारे साथ हैं, वजीर कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से, डॉक्टर वजीर अली नाइस यो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहा जाता है। अनवर भाई कहते हैं कि उहे भी के नियम हुआ हाणे जिन के नजर अचन थियूं हजार खामियों असा में साईं, कदें उहे चवंदा हुआ तो जड़ो कोई ना है अली, इहो डटो ॾींदा हुआ मिड़े हरू भरू अजाई मानन जी गालन में नहीं था कयो। अच्छा रमजान भाई कहते हैं मौलाना इस्लाम अदर, मेरी बहन कैसी हो, अल्लाह से आपको आमीन जी आमीन, बस ऐसे ही दुआ दिया करें। और उसके अलावा वजीर भाई बिल्कुल आपकी पसंद का गाना लगाते हैं। और साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ हैं, वालेकुम अस्सलाम सिद्रा मुस्कान, मौलाना इस्लाम अदर कहते हैं फ्रॉम डीआईजी ऑफिस लाड़काना शाहिद बबर का कलाम, थैंक यू जी जी बिल्कुल आपकी पसंद लगाते हैं। और जी हमारे साथ हैं रिजवान अली कहते हैं बहना कैसी हो आप, शो में आपको वेलकम कहता हूँ। और आपने गाने की फरमाइश कर दी है, बिल्कुल जी आपकी पसंद का गाना लगाया जाएगा रिजवान भाई। और चाचा खालिद जुड़ी जो आ चुके हैं, कहती है अस्सलाम वालेकुम बेटा सिद्धू, हाउ आर यू, हो फाइन, आई एम नॉट गुड, दैट्स व्हाई आई एम नॉट लिसनिंग योर शो बेटा सिद्धू, आई वाज एडमिटेड इन। हाँ भाई वो फहीम भाई ने बताया था, क्या हो गया आपकी तबीयत को इतनी ज्यादा क्यों खराब हो गई है, ख्याल तो आप अपना रखते नहीं है, तो ख्याल रखा करें और जल्दी जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर से हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। और वजीर भाई कहते हैं विलेज मोहम्मद अली जी जी बिल्कुल प्यारे भाई आपको वेलकम कहा जाता है। उनके अलावा हमारे साथ पैनल पर आते हैं तो कुछ मैसेजेस हैं, लेकिन एक अदद हम गाना भी लगा दी लिस्ट में तो अच्छा रहेगा, तो ये वाला हमारे पास एक गाना है जिसकी फरमाइश थी किसी भाई ने कर दी थी, तो चलें जी साथ साथ इस गाने को भी सुनते आए। और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिलाल अली हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बताएं बिलाल कैसे हैं।

फुल मजे में आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर जो पोस्ट के लाइक शेयर कंदा हलो कंजूसी न कंदा कयो। अच्छा ये हमारे साथी साइमा मीर कहती है अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह ज़हीन आरजे सिद्रो वेलकम फिर से और शो मस्त है वजह यू टॉपिक जीने मरने की डेट और कौन सी हर्बल चीज एड की गई है वो सब देखती हूँ क्या बात है जी क्या बात है और कहती है प्लीज प्ले फरीहा परवेज मैं देखती हूँ चलिए जी बिल्कुल साइमा मीरा की फरमाइश का गाना भी लगाया जाएगा और आपने सलाम दिया है जी मेरे गांव की प्यारी परियों को ओके जी ओके वैसे गांव की लड़कियां परियां ही होती हैं ऊपर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगी तो क्या बात हो जाएगी आय हाय हाय सोने पे सुहागा। अच्छा ये हमारे साथ है सिद्रा मुस्कान अस्सलाम वालेकुम अलैहिस्सलाम अदर बेवस बलोच दरगाह साईं जमाल शाह मोरो से आप कैसी हो आपका शो बहुत अच्छा है और आपकी आवाज नाइस है थैंक यू बहुत शुक्रिया। माता जो फुल मजे में आयो कौन डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाया था कौन अच्छा यासीन खान कहते हैं आज के दौर में किसी पे एतबार नहीं करना बिल्कुल जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और सागर अली हमारे साथ कहते हैं बेवस सागर अली बेवस वरी या बेवस ही छड़ी जो तां हाने डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर सही सोना थी वेंदो।

ओके जी, अब्दुल गफार भाई भी हमारे साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं। अब्दुल गफार भाई क्या कह रहे हैं? खुश आमदीद जी, आपको भी वेलकम कहा जाता है। नवाब शाह से आप हमारा शो सुन रहे हैं, नहीं पता नहीं कहाँ से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपको वेलकम कहते हैं। वैसे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल हो चुकी होगी, आप जाइए वहां से मालूमात लीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है नहीं बता दिया करें, अगर नहीं मिल रही तो फिर आप क्या करेंगे, आप डायल करेंगे 1300 12 50 25 970। इहो नंबर अगर बंद हुजे, मसरूफ़ हुजे, नए नए तव्हांखे रिस्पॉन्स मिले त ॿियो बि नंबर आहे जंहिं ते तव्हां राबितो करे सघो था। ऐं नंबर आहे 2032 73 84 309। हांजी सिंधी में नंबर यादि कया आहिनि। उन्हनि बाबा चवंदा आहिनि त भाजी तव्हां अंग्रेज़ी में नंबर ॿुधाईंदा, असांखे सम्झ में न ईंदो। बाबा तव्हांजे लाइ सिंधी बि ॿुधायां थी हाणे। तव्हां नंबर ते राबितो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। ऐं हाणे गानो हलायो हथ मथे कयासीं ॾाढो आहे बाबा, हिन गाने जी बि फरमाइश अचो त मिली करे इंजॉय था कयो।

हाणे ही गानो ॿुधो, गाने खां फौरन भाॼी असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ वञूं था, हुन खां पोइ जल्दी मोटी तव्हां ॾींदासीं। तव्हां करे न वञो, हिते वेठा हुजो, पपन बुलो ॿुधो ऐं मां उहो हीअं वञी मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आज अपना
2: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 नेटवर्क
3: सिंध की आवाज
4: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन के बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे खत्म ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: छा तव्हां जोड़नि जे सूर पुठनि जी तकलीफ़ कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि पुठनि कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं हमज़ा दवाखाना सोनहरी मस्जिद रेलवे फाटक मातली राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3404-01-287 ख़ात्माए दर्द कोरस सूर खां छुटकारो सुकून भरी ज़िंदगी
6: पाकिस्तान की ज्यादातर ज़मीनें फॉस्फोरस की कमी का शिकार है इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ इसमें मौजूद फॉस्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा 3 की ताकत मिले फसल भरपूर खिले
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
9: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
10: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
9: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण
9: मैनेजर यूनस बकारी सां
7: 786
9: जी हा 2315525786
7: GFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़

0: दाना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: जेकर तवाके मेदे जी तकलीफ, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

क्या बात है, बहुत ही सुंदर सा गाना एंजॉय कर रहे हैं। इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं जनाब। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के टाउन से। यहाँ पर आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, शामले प्रोग्राम होते जा रहे हैं और अपने होने का एहसास दिलाने के साथ साथ ये भी बताते जा रहे हैं कि आपके करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल हो चुकी है या फिर अभी तक बाकी है। ओके जी, आप बताएं और मैं आपको बताने लगी हूँ कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जनाब सखर, मोरो, मीरपुर खास, मटियारी, सकरन, मेहरापुर, मातली, 92 नूरियाबाद और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से मैं आपके साथ साथ मौजूद हूँ। हम आ चुके हैं प्रोग्राम के लास्ट लिंक में और जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया या फिर जो स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है, सभी को वेलकम इन खुशामदी। आपकी मोहब्बतों, समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। उनके अलावा अगर तुम्हारा पांच करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की अवेलेबल कराइन चाहियो था तो तुम जल्दी जल्दी डायल करो 03-12-50-25-907। बड़ी 300 बार हाँ पंजाब पंजवी है 970। अब यो नंबर आहे 03-27-38-43-09 यानी बुड़ी 300 बट्री है 73-84-309।

भाई इसका तो मुझे भी मतलब पता नहीं है क्या होता है इसका मतलब, कोई ऐसा इंसान बताए जिसको बलूची आती है। जी बस दिल भर बस साउंड अच्छा लग रहा है, बाकी तो एंजॉय करो और क्या। और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ही बात है, तमाम भी सोना सोना थी वेंदा, तमाम भी हसीन थी वेंदा, तमाम भी खूबसूरत।

तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया था कि आप मुझे बताएं कि जब आप अपने लिए कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके ऊपर क्या चीज सबसे पहले आप नोटिस करते हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो कि सबसे पहले आप देखते हैं उस प्रोडक्ट के अंदर जो कि आप परचेज कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है कि वो जो है ना वो हाँ जी नाम देख लेते हैं, कुछ लोग मॉडल की फोटो देख लेते हैं, कुछ लोग देख लेते हैं कि भाई इस क्रीम के अंदर क्या क्या चीजें ऐड की गई, और कुछ लोग देखते हैं जी एक्सपायर डेट क्या है क्रीम की, प्रोडक्ट की, जिस भी चीज की। तो आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप सबसे पहले क्या चीज नोटिस करते हैं। और ये प्यारा सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है परिहा परवेज जी की आवाज, आइए मिलकर एंजॉय करते हैं। आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डीज कंप्यूटर शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डीज।

अपना बना ले, डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपना बना ले. और अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं खूबसूरती को मजीद निखारने के लिए, अपनी रोजमर्रा ब्यूटी केयर रूटीन में आप शामिल कीजिए जनाब डी स्किन ब्यूटी क्रीम, क्योंकि इसका नरम और खूबसूरत एहसास आपकी स्किन केयर रूटीन में मजीद जो है ना वो निखार ला देगा, आपकी स्किन केयर रूटीन को मजीद खास बना देगा और आपकी स्किन साफ सुथरी और अच्छी तरह जो है ना वो मॉइस्चराइज भी हो जाएगी. आपकी जल्द की शख्सियत जो है ना, आपकी ऐसा ही होता ना कि आपकी जो शख्सियत है वो आपकी जल्द से भी बहुत ज्यादा जानी जाती है. अगर आप ये चाहते हैं कि हमारी जल्द जो है वो हमेशा फ्रेश नजर आनी चाहिए, तरोताजा नजर आनी चाहिए और पुरकशिश नजर आनी चाहिए, नो रिंकल, नो फ्रिकल, नो एक्नी मार्क्स, तो आपने क्या करना है, आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाम ले तो जो नंबर आपको बता रही हूँ उसके ऊपर आप तक कीजिएगा. उन भाई साहब से मालूम आंत लीजिए, भाई साहब क्या करें बताएं तो क्योंकि हम इस्तेमाल करना चाहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम, तो लाजमी परचेज कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और हसीन हो जाइए. आजकल फरीहा परवेज के गाने मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना क्या ही बताऊं, यानी कि ये इतनी ओल्ड सिंगर है तो इसके गाने तो वैसे ही बहुत अच्छे हैं, सारे गाने जो भी उठा ले एक एक गाना इतना खूबसूरत तरीके से बनाया गया है. लेकिन हाँ, ये आजकल मुझे क्रेज चढ़ाएगी, आजकल मुझे फरीहा परवेज के गाने जो है ना वो बहुत अच्छे लग रहे हैं और खास करके वो एक जो मैं आपको ज्यादा सुनाती हूँ समझ गए होंगे.

गई थी, गाना हो गया खत्म, और यहाँ पर एक और गाना हमारी लिस्ट में है, जरा वो भी हम सुनेंगे। और साथ साथ ये गाना होने वाला है जी मास्टर मंजूर की आवाज में। हाँ जी, तो हम ये प्यारा सा गाना एंजॉय करेंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको मुनासिब सी कीमतों में मिल रही है। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लगाने के क्या तरीकेकार हो सकते हैं, वैसे तो कुछ लोगों को लगाने के तरीकेकार भी मालूम नहीं होते हैं, तो लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये होंगे कि आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जल्दी से आप जो है ना परचेज कीजिए। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, और डी स्किन फेस वॉश जो है ना वो आप परचेज करेंगे उसके बाद, और आप रात के टाइम जो है ना सोने से पहले बस अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लीजिए। ये आपकी स्किन केयर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। जब आप कुछ दिनों के बाद अपने आप को देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये जो हमने 5-10 मिनट अपने लिए निकाले थे ना, ये बड़े फायदेमंद साबित हुए हमें। तो अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना फेस वॉश कीजिए रात के टाइम, अच्छे से चेहरे को क्लीन किया करें। अगर आप कोई भी नाइट क्रीम नहीं लगा रहे हैं या फिर आप लगा रहे हैं तो फेस वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आप क्रीम लगाएं ना लगाएं, फेस वॉश आपने लाजमी करना है। फेस वॉश करें सबसे पहले, अपने चेहरे पर ये जो डस्ट होता है, पोल्यूशन होता है, गंदगी होती है, सारे दिन की जमा हो जाती है आपके चेहरे के अंदर, तो उसको वॉश करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसको वॉश कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए, अच्छे से फेस को सुखा लीजिए, फिर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। और इस तरह अप्लाई करेंगे कि भाई हल्के हल्के हाथों से लगाएं, और जो क्रीम है ना वो आपके चेहरे पर थोड़ी सी नजर आनी चाहिए। मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ क्योंकि बस ये सही होता है। कुछ चीजें वाकई जो होती ना सही, तो बस उनको बता दिया करें कि हाँ ये चीज सही है, तो बस ऐसे किया करें। तो बिल्कुल वैसे ही अगर आप हल्के हल्के हाथों से और नरम नरम हाथों से लगाएंगे सॉफ्टली, क्योंकि कुछ लोग बड़ा हार्ड तरीके से लगाते हैं, मसाज कर रहे होते हैं नाइट क्रीम के ऊपर, तो ये चीज से जरा गुरेज किया करें। इन चीजों से थोड़ा सा जो है ना वो पास होकर ना कहो बाबा ये चीज वक्त हली तव्हांखे नुकसान ईंदव। सो असां चाहियूं था त तव्हां हमेशा जेको पंहिंजी खूबसूरती जो ख़्यालु रखो, ऐं हमेशा तव्हांजी खूबसूरती जेका आहे न उहा सफ़ा ईअं बहितर तरीक़े सां हुजे। ऐं तव्हां अगरि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो त सॉफ्टली कयो, ऐं तव्हांखे रिज़ल्ट मिले उहो अहिड़ो मिले जो तव्हां ॾिसी करे चओ वाह साईं वाह कमाल थी वियो। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी इहा बि ॻाल्हि आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट ॾींदी सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ 2 रातिनि जे इस्तेमाल। ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम जंहिंजे अंदरि वाइटमिन ई बीट्स आहिनि, माइक्रो बीट फार्मुलेशन आहे, त इन जी बि तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हांखे रिज़ल्ट मिलंदो अहिड़ो ज़बरदस्त जेको तव्हां सोचींदा आहियो त बाबा हीउ रिज़ल्ट असांखे मिले पर कहिड़ो प्रोडक्ट ॾींदो। त बेशक तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम ॾेई रही आहे उहो रिज़ल्ट जेको तव्हां हमेशा हासिल कंदा आहियो ऐं करणु चाहियो पिया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांखे मिले भई मर्द मायूं हर कोई इस्तेमाल करे सघे थो, मुनासिब कीमत में तव्हांखे मिली रही आहे। तव्हां वञो बाबा परचेज कयो ऐं पंहिंजी खूबसूरती जो थोरो ख़्यालु

ओके जी वाह सही वाह ॾाढो भलो गानो जेको तव्हां इंजॉय कयो पिया प्रोग्राम आहे वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड कयो वञे थो बाबा वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे तावन सां अगरि तव्हां बि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या वरी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जे बारे में मालूमात हासिल करणु चाहियो था या तव्हांखे ख़बर नाहे त बाबा जेके प्रोडक्ट असां इस्तेमालु कयूं पिया इन्हनि खे असां छो इस्तेमालु कयूं पिया कुझु माण्हू वीचारा इलाही मासूम हूंदा आहिनि त उन्हनि खे बसि जेको बि दुकानदार प्रोडक्ट ॾेई छॾींदो आहे न त हू इस्तेमालु करणु लॻंदा आहिनि अगरि इहा चीज़ तव्हां में बि आहे त बाबा पंहिंजी थोरी नेचर खे चेंज कयो इहा चीज़ सफ़ा पाण मां कढी छॾियो तव्हां वञो दुकानदार खे चओ बाबा असां डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठण आया आहियूं ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठी पोइ ई वेंदासीं अगरि दुकानदार चए त असां वटि इहो प्रोडक्ट कोन्हे अवेलेबल त तव्हां हुनखे नंबर ॾेई अचो जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई ऐं चओसि त भाउ हिन नंबर ते तव्हां राबितो कयो ऐं पंहिंजी दुकान ते ही प्रोडक्ट अवेलेबल करायो जीअं तव्हां वटि अवेलेबल थी वञनि ऐं पोइ असांखे वठण में आसानी थी वञे सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जा खोड़ सारा फ़ाइदा जेके सॼे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आई आहियां हाणे तव्हां ते डिपेंड करे थो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम कॾहिं वठंदा कॾहिं इस्तेमालु कंदा ऐं ॾिसूं था केतिरा ख़ूबसूरत थी वेंदा अच्छा कुझु मैसेजेस आहिनि टाइम बि तेज़ी सां गुज़रंदो वञे थो और साइमा मीर हमारे साथ मौजूदु कहती है सुनाए कि गरीब के बच्चे वफादार अमीर के बच्चे बेवफा ऐसा भी नहीं होता और कहती अच्छा सिंधी सॉन्ग अच्छा है लेकिन किसी के लिए किसी और को छोड़ना बेवकूफी मानी जाती है सामने वाला चाहे कितना भी डेंजर क्यों ना हो लेकिन हाथ हमेशा ये भी ठीक है जी ये भी ठीक है और ये हमारे साथ मौजूद है कहती योर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड योर शो इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल पिठोरो से दाऊद जमाली हमारे साथ है एंड ओसामा अवान एंड सर्वर मीरानी प्लीज प्ले सॉन्ग फॉर सुमरो ओके मैं कोशिश करूंगी टाइम बच गया तो आपके लिए लाजमी आपकी पसंद का जो गाना है ना वो चलाया जाएगा और सागर भाई कहते हैं कि गिफ्ट कयो असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बाबा वठो पांजी वठो मां कंहिंखे गिफ्ट कंदसि पाण वठो रेशम गली वञो उतां मालूमात करायो ऐं उन खां अलावा जेकी जेकी असांजा माण्हू असांखे ॿुधनि पिया पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो पंहिंजे मार्केट हलिया वञो ऐं उतां मालूमात वठो तव्हांखे हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम आराम सां मिली वेंदी अच्छा चाचा कहते हैं सिंधी तो ॾाढी प्यारी आ मुंहिंजी बस ॾिसो ॾिसो तारीफ़ न कंदा कयो अला फरवा गुल हमारे साथ फरवा तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया हिदायतला कहते एक ये सिंगर दो दफ़ा क्यूं नी एक ही सिंगर एक मरतबा चला है और इन खां अलावा रमज़ान भाई आपने भी गाने की फरमाइश कर दी है ठीक है जी लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में तो बताए या नहीं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके करीबी जनरल स्टोर पर मिल रही है या फिर नहीं अच्छा चाचा तव्हांजो जेको गानो आहे न पंज बजे वारे प्रोग्राम में ॿुधंदासीं ठीकु आहे और जी सालार सिकंदर हमारे साथ मौजूद है सालार सिकंदर जी आपको वेलकम

पांजे हिकड़ो भेड़ो अचो अस सगल है डाडो वीआईपी गानो अस बुधू पया और यहाँ पर गुलाम हुसैन अबड़ो लिसनर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं जी आपको वेलकम कहा जाता है थैंक यू वेरी मच और आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही होगी अगर नहीं मिल रही तो आप लाजमी मालूम लीजिएगा फिर परचेज करके मुझे बताइएगा कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा माहिर इरफान सियाज साहब हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया सर थैंक यू आप हमारे साथ पूरा प्रोग्राम सुनते हैं जी थैंक यू सो मच इसके लिए।

ऐसी नाराजगी की बतानी पड़ रही है कि हाँ भाई मारो ठल आया चु मुझे मनाए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करें, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आप डे स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं। फरवा बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं, और मुलाजिम भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम दादी भलिया है। बिल्कुल जी चाचो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर दुआ है। अखलाक भाई कहते हैं सिदरा तमाम वनो था आणी हाल लगी तही तो मुख्य आने वन गुर्जे। फहीम कहते हैं भाऊ मेरी सिंधी वाली पोएट्री आपने गलत रीड की। भाई सिंधी मेरी जरा वीक है तो इसके ऊपर ये क्यों और कैसे ये मत बोला करें। और उन खां अलावा अज जो सवाल हो तो उन खां अलावा जो भी तमाम मानू मुख यो जवाब दिनो तो असा एक्सपायरिंग डेट जो है चेक करना है तो ये ढा मू भला हों अगर तुम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर ना तो यू सब चीजों तो बाद में चेक कर पर जो एक्सपायरिंग डेट आ ना उनके सब का पैर चेक लाजमी कर वा कर कई मरतबा ही तको प्रोडक्ट आ वो एड़ो मिली वेंदो आहे जेको एक्सपायर्ड हुंदो आहे जडी ता उनके इस्तेमाल कंदा जडी गोठाणा वेचारा कुछ मासूम हुंदा आहिनि त जडी तव्हां कोई भी प्रोडक्ट वठो त उनजी एक्सपायरिंग जेका डेट आहे न उहा लाज़मी चेक कंदा कयो उहा डेट ॾिसी पोइ तव्हां प्रोडक्ट परचेज कयो ऐं इस्तेमाल कयो जे तव्हांखे खूबसूरती मिले सफ़ा बहितर तरीक़े सां। ऐं हाणे इजाज़त ॾियो मूंखे वरी तव्हांखे जॉइन कंदासीं 5 बजे वारे प्रोग्राम में त पंहिंजो ओ हेॾो सारो ख़्यालु रखो की जेका ग़लती थी हुजे त माज़रत कयूं था। जंहिंजो फीडबैक रहिजी वियो आहे को गानड़ो छानड़ो रहिजी वियो त माज़रत कयूं था बाबा मोकिलाणी न आहे। सलामत सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: यमन हुसैन जा सऊदी शहरन ते हमला, 73 खां वधीक शहरी जख्मी। हुसैन सऊदी शहर अबाक मिस मुस्तेक नजरान ऐं जाज़ान ते हमला कया। हमलनि जे नतीजे में औरतनि समेत 73 खां वधीक शहरी ज़ख़्मी थिया। सऊदी इतिहादी फोर्स मौजूदु हुसैन जे शहरनि ते हमले जो सख़्त जवाब ॾिनो वेंदो। ईरान मुआशी जारियत जारी रखण ते विचोभर में बहरी ज़ोन क़ाइम करण जी धमकी ॾेई छॾी। ईरान जे सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जे सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई चयो आहे त अमेरिका मुआशी नाकाबंदी जारी रखी त रेड सी खां ईरानी समुंड ताईं अमेरिकी नाकाबंदी ताईं बहरी ज़ोन क़ाइम कयो वेंदो। ईरान जंग खटींदे ई तेल सस्तो थी वेंदो। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां जंग खटण बाद तेल जूं क़ीमतूं तेज़ीअ सां घटि थींदियूं। अमेरिका में फी गैलन तेल $2 ताईं बि थी सघे थो। ईरान खे कॾहिं बि एटमी हथियार हासिल करण न ॾिना वेंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेट। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
1: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
3: हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
1: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
3: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
3: जी हाँ, 2315-2576।
1: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ, गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलायण लाए
4: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
4: जी हाँ, 2315-2576।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुँचे। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: ईरान जंग नथो चाहे पर मज़म्मत खां पोइ ते बि न हटंदो। ईरानी सदर मसूद पज़िशान चयो आहे त तेहरान सदाई जंग जो मुखालिफ़ रहियो आहे ऐं कॾहिं बि जारी नाहे रहियो। ईरान जारियत ख़िलाफ़ पंहिंजो दिफ़ा करे रहियो आहे, पंहिंजे मुफ़ादनि जो दिफ़ा जारी रखियो वेंदो। सिंध हाई कोर्ट फहमीदा पिताफ़ी केस में आई जी सिंध खे शोकाज़ नोटिस जारी करे छॾियो। आई जी सिंध घरू सेक्रेटरी डी आई जी सखर एस एस पी घोटकी ऐं जांच आफिसर खे 21 सेप्टेम्बर ते ज़ाती तौर पेश थियण जो हुकुम। अदालत नारी फहमीदा पिताफ़ी खे सरदार अब्दुल बारी पिताफ़ी हवाले करण बाबति बि जांच जो हुकुम ॾेई छॾियो। फहमीदा जी बाज़ियाबी ऑपरेशन जी निगरानी आई जी हवाले डी आई जी सखर ऐं एस एस पी घोटकीअ खे आई जी सिंध जी निगरानीअ में कम करण जो हुकुम। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना जी अदालत लिखित में ऑर्डर जारी करे छॾियो। केस में जेकॾहिं को पुलिस ऑफिसर मुलविस हुजे त कानून मूजिब कार्रवाई कई वञे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई जी 27 सेप्टेम्बर ते ऐलानियल एहतजाज बाबति दाख़िल दरख़्वास्त ॿुधणी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस मामले खे आइनी बोहरान सां भेट ॾेई छॾी। अटॉर्नी जनरल खे नोटिस जारी, ॿुधणीअ लाइ लार्जर बेंच जोड़ण जो फ़ैसिलो। अदालत चइनी सूबनि जे आई जीज़ ऐं एडवोकेट जनरल्स खे बि नोटिस जारी कंदे ज़ाती हैसियत में तलब करे वरितो। दरख़्वास्त ते वधीक ॿुधणी 10 सेप्टेम्बर ताईं मुल्तवी कई वई।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। जीए एफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है एनपीएस 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
4: पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तो GFM 90.4 मात

0: बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
1: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
0: ऐ हां गोठन शहरन ऐ परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
1: बस पो हाने खणो फोन ऐ पेंजे इश्तियार लायण लाए
0: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
1: 0331252578 6
0: जी हां 2315525786
1: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज।

आप सुन रहे हैं GFM ETH नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
4: जी हाँ 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, माथली और माथली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध हाईकोर्ट फहमीदा पताफी केस में आईजी सिंध के शो कॉज नोटिस जारी कर छोड़ो। आईजी सिंध गरूर खटी डीआईजी सक्कर एसएसपी गोटकी जांच ऑफिसर के 21 सेप्टेम्बर से जाती तौर पेश करने का हुक्म। अदालत नारी फहमीदा पताफी के सरदार अब्दुल बारी पताफी हवाले करने बाबत भी जांच का हुक्म दे छोड़ो। फहमीदा की बाजियाबी ऑपरेशन की निगरानी आईजी हवाले डीआईजी सक्कर एसएसपी गोटकी के आईजी सिंध की निगरानी में कम करने का हुक्म। जस्टिस तस्लीम सुल्ताना की अदालत लिखित में आर्डर जारी कर छोड़ो। अदालत चयो तो जडे को पुलिस ऑफिसर मुलविस हो जाए तो कानून मौजिब कार्रवाई कई वे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां सऊदी अरब से हूसी बाग़ियन के हमलन की मुसम्मत सऊदी अरब से गड रहण वाले अज़म जो भी वर्जाओ। शहबाज शरीफ चयो त सऊदी शहरन ते हमला मुसम्मत चुका आहिन। हमलन में जख्मी थियल शहरियन की जल्द सेहतियाबी लाए दुआगू आहियां। पाकिस्तान सऊदी सलामती खुद मुख्तारी के दिफा लाए गड बीठल आए।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज। आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा गोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
2: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

कख सड़न पन सड़न सड़े साओ गाह जन रिझायो अल्लाह तो न लगे तिन के सोहारी सिंध जे मलूक मिट्टी ते रहंदड़ तमाम मौजिस बुधंदड़न के लाखीने लतीफ जी बोली मेहरान जी छोली आई मिठड़ी अमड़ जे लोली जेड़ा सहना सलाम आई GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जे सजी टीम जा कुर्ब कबूल पवन मौजे सामईन अवां जा कहड़ा हाल आहिन अवां खुशबाश आहियो ठीक ठाक आहियो चाक चंगा बलाई मतारा जोड़ असांजी दुआ है त सदाई तारन में चंड हुजो खीर में खंड हुजो मेवन में अंबू हुजो ऐं कॾहिं पवां जी मुर्क मेरी न थिए सदाई अवां जे लुड़कन जो डुकार ऐं मुर्कन जो सुकार हुजे शाल अवां खे कोसो वाह न लॻे शाल अवां डुखियो ॾींहुं न ॾिसो जुग जुग जीओ मुर्कंदा महकंदा ऐं गुलनि जीअं टिड़ंदा रहो मौज़े सामईन ही आहे GAFM 88 रेडियो नेटवर्क जंहिंमें शामिल आहिनि GAFM मातली GAFM मीरपुर ख़ास GAFM मटियारी GAFM सकरंड

सिंधड़ीअ जी शाम शो खणी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर अवां जो पंहिंजो आरजे अवां जो मेज़बान जी हा उहो ई साॻियो अवां जो यूनिस बकारी। अवां जे सुख ऐं सलामतीअ जूं खोड़ सारियूं दुआऊं खणी अवां जी ख़िदमत में हूंदासीं ठीक 5 वॻे खां 7 वॻे ताईं गॾु। जी मज़ सामाइन, त पोइ अॼोके शो जो पहिरियों आइटम असीं ऑनियर करे रहिया आहियूं ऐं उनखां पोइ वापसि अची अॼु जेको शो हूंदो उहो असां शो अॼु हूंदो असांजो हिकिड़ो सेगमेंट हूंदो, हिकिड़ो सिलसिलो हूंदो जंहिंमें पाण गॾिजी अॼु उन ते कोशिश कंदासीं। त हिकिड़ो गेम शो हूंदो आहे, उहो कोशिश कंदासीं पाण खेॾूं। त पोइ हाज़िर आहे आवाज़ जी दुनिया जो पहिरियों तोहफ़ो अवां जी ख़िदमत में साइण आबदा परवीन जो ई आवाज़।

जी जनाब, वेलकम बैक। अवां बुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क आई। अवां बुधो पिया पंहिंजो शो सिंधड़ीअ जी शाम। सिंधड़ी जी शाम अवां जे नाम थी चुकी आहे ऐं अॼोके ॾींहं ते अवां जे लाइ असां गीत पिरोली सिलसिलो शुरू कंदा आहियूं। सो हाज़ुर आहे अवां जे पसंद ते अवां जो ई हिकड़ो अहिड़ो सिलसिलो, जंहिंमें असां हिकड़ो को गानो को ट्रैक ॾींदासीं, अवां खां पुछंदासीं उहो आवाज़ कंहिंजो आहे। अवां खे सिर्फ़ ॿुधाइणो त इहो आवाज़ कंहिंजो हूंदो। सो पाण उन खां पहिरीं जो ओॾां हलूं, तव्हांखे ॿुधायां त फ़क़ति हर सवाल में तव्हां हिकड़ो दफ़ो कॉल कंदा। अॼु तव्हांखे इहो हूंदो, जीअं सवाल चेंज थींदो त असां वरी ॿिए, माना असांखे हिन ॿिनि कलाकनि अंदरि केतिरा ई गाना पुछणा आहिनि हर गाने जे, ऐं जेको ख़तमु थियण जो हूंदो उहो इहो हूंदो त घटि में घटि चार दुरुस्त जवाब अची वञनि। असां वरी गानो चेंज करे नओं सवाल पुछंदासीं। त हाज़ुर आहे अॼोके शो जो पहिरियों सवाल, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? मोबाइल पंहिंजे हथ में खणो, टाइप करियो नंबर जंहिं ते तव्हां कॉल कंदा। जी हा, 0334-3525-786 0334-3525-786 ते हिन सवाल जो जवाब ॿुधाईंदा। वधीक का गुफ़्तगु न थींदी। तव्हांजो नालो पुछंदुसि, फनकार जो नालो पुछंदुसि, त पोइ ॿुधायो ही आवाज़ कंहिंजो आहे।

0: पहरी कॉल अची चुकी है, ॾिसंदा कंहिं जो आवाज़ आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। तव्हां अलाह जी बंदी था ॻाल्हायो? ही आवाज़ कंहिंजो आहे? ठीकु आहे, तमामु घणी महिरबानी, भलीकार चवंदासीं ऐं तव्हांजी कोशिश लाइ तव्हांखे सलाम पेश कयूं था। अलाह साईं कंदो तव्हांजो जवाबु सही ईंदो, सही अचे थो या ग़लति अचे थो थोरो इंतज़ारु कजो, ठीकु आहे? थैंक यू वेरी मच, तव्हां कॉल कई, महिरबानी, थैंक यू। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम। जी केरु साहब ऐं किथां खां? अच्छा, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? जी जी, इहो ई जो हले पियो ॿुधो। पकी ॻाल्हि
1: आहे?
0: धुको त कोन पियणो? चलो चलो ठीकु आहे, कोशिशि कंदासीं, ॾिसंदासीं तव्हांजो जवाबु कीअं थो अचे। थैंक यू वेरी मच कुर्बान, ख़ासि कैली महिरबानी तव्हांजो। ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां?
2: मोहम्मद सलीम अहमदाणी, लॻ साहब दस्ती ॻोठ राज़ी खान अहमदाणी खां।
0: सलीम अहमदाणी साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? अहमद मुगल जो। तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी, तव्हां कोशिश कई ऐं तव्हां पक समुझो था त अहमद जो आवाज़ वरी ॿुधो।
2: अहमद जो ई आवाज़
0: पकी ॻाल्हि? अच्छा जी, थैंक यू, थैंक यू। अवां कोशिश कई लख थोरा, पर अवांखे एतिरो ॿुधायां त जवाबु दुरुस्त न आहे, अञा कोशिश कयां। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त हाणे केरु आहे कॉल ते। हलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम।
0: जी केरु साहब ऐं किथां खां? रुस्तम अली पवर साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? लॻे थो न पक आहे या शक आहे? तव्हां कहिड़े ॻोठ खां ॿुधायो, नालो पंहिंजो ॿुधायो? महिरबानी रुस्तम पवर, थैंक यू, थैंक यू, महिरबानी लख थोरा। ओके जनाब, ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, साॻी माण्हू असलम तुदी जो आवाज़ आहे, मोहम्मद सलीम अहमदाणी।
0: ॾिसो, डबल कॉल नाहे करणी साॻे सवाल में, इन जे करे पोइ उहो असांखे इहो असांजी पॉलिसी जे ख़िलाफ़ आहे। ओके जी, पर हाणे साॻे सवाल में डबल कॉल न कयो, जॾहिं ॿियो सवाल अचे तॾहिं ॿुधाइजो, पर इहो बि जवाबु तव्हांजो सही नाहे। थैंक यू वेरी मच मिठा माण्हू। ओके जनाब, हिकिड़ी नंढी रिक्वेस्ट आहे त साॻे सवाल में ॿ हज़ार कॉल न कयो, उहो ॿिए जे हक़ ते नुक़सान हूंदो। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, पोइ मूंखे ब्रेक वठी तव्हांखे जवाबु ॾियणो चओ, दुरुस्त जवाब जाम अची विया आहिनि। जी हलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, केरु साहब ऐं किथां? सालेपट खां ज़वार मोहम्मद बचल शंभाणी साहब, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? पकी ॻाल्हि
4: आहे?
0: भला बिल्कुलु जवाबु तव्हांजो लॉक करियो न करियो? पकी ॻाल्हि आहे? ॾिसो, धुको त कोन्हे न? थैंक यू वेरी मच लख थोरा, तव्हांजा तव्हां सवाल जो जवाबु ॾिनो, ॾिसंदासीं थोरी देरि वेट कजो, तव्हांखे जवाबु ॿुधाईंदासीं, ठीकु
4: आहे?
0: महिरबानी, ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, साईं यूनुस साहब कहिड़ा हाल?
0: साईं अलहमदुलिल्लाह, केरु साहब पिया ॻाल्हाइनि?
5: सर गुलाम मुर्तज़ा साहब बलोच थो ॻाल्हायां, मिठो ख़ासि खां।
0: बलोच साहब, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो? अलहमदुल्ला। गुलाम मुर्तज़ा साहब, सवाल सां पुछो, हिकिड़ो आवाज़ प्ले कयो आहे, तव्हां ख़बर आहे आवाज़ कंहिंजो आहे?
5: सर जेको पहिरियों तव्हां इहो जेको सॉन्ग प्ले कयो आहे,
0: इहो रहमान मुगल जो तव्हां लिखियो आहे। अच्छा, महिरबानी, तव्हांजी कोशिश खे सलाम पेश था कयूं, पर एतिरो ज़रूरु चवंदुसि, अञा कोशिश कजो छो त ही रहमान मुगल जो आवाज़ न आहे। थैंक यू वेरी मच साईं। जी जनाब, मां हिकिड़ी कॉल अटेंड करे पोइ तव्हां वधां पियो ब्रेक ॾांहुं। हलो अस्सलाम वालेकुम। केरु साहब ऐं किथां खां?
6: गुलाम अहमद चांद।
0: जी, ही आवाज़ कंहिंजो आहे, सुञातो आहे तव्हां?
6: सागर सिंधी जो आहे।
0: अच्छा, कोशिश पकी कई अथव या न, ॿियनि जो आवाज़ ॿुधी जवाबु पिया ॾियो? अच्छा ठीकु आहे, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच लख थोरा अवांजा। ओके जनाब, त पोइ असां हाणे वठूं पिया हिकिड़ो ब्रेक, फौजी सुमर जो ट्रैक तव्हांखे ॿुधाए अची ॿुधाईंदासीं तव्हां आवाज़ खे सुञातो आहे या न, पहिरियां चार दुरुस्त जवाब कंहिंजा हुआ, ऐं जेके जेके महिरबानी दुरुस्त जवाब मोकिलींदा उन्हनि जा असां हिकु ॿ टे ऐं चार नंबर ॿुधाईंदासीं। ओके जी, फिलहाल फौजिया सुमर जो आवाज हनीफ मेमणी की शायरी है अचो तो गजी बुधऊँ एक दर्द जहाँ एक अड़ो आवाज जैमें दिल शिकार।

जी जनाब वेलकम मलिकार खुश आमदीद सवाल पुछो सी ते ही आवाज कहन जो आए अमा बुधो पिया जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के शो आए सिंध डी जी शाम मेज़बान अमा जो आर जे यूनिस बकारी मोहब्बतू अमा जे नाम असा पुछो सी ही आवाज कहन जो आए जंहिंजे लाइ तव्हां खोड़ सारनि महिरबानी कॉलूं कयूं पर तमामु ख़ुशी थी त हिन में तमामु घणा दुरुस्त जवाब अची चुका। पहिरीं ॿुधायूं त जवाब जेको तव्हां ॾिनो उहो आहे ही आवाज़ आहे सागर सिंधी जो। जिन जिन महिरबानी अहमद मुगल सरमन सिंधी ऐं मुख़्तलिफ़ आवाज़नि सां मैच थींदड़ आवाज़ हुजण जे करे माना ॿुधायो उन्हनि जी कोशिश खे सलाम था पेश कयूं। इन में को मसइलो कोन्हे, ही हिकड़ी पंहिंजी म्यूज़िकल गेम आहे, हिन खे केर बि दिलि ते न वठंदो। कोशिश कंदासीं पाण त दुरुस्त जवाब ईंदा त उहे असीं जेको दुरुस्त हूंदो उनखे अनाउंस न आहियूं कंदा ऐं जेको दुरुस्त न हूंदो उनखे चवंदासीं कोशिश करे। ठीकु आहे, त पोइ असांखे ॿुधायूं त पहिरियां चार जेके दुरुस्त कॉल्स आहियूं उन्हनि में पहिरियों नंबर कॉल आई हुई अल्लाह जी बंदी जी, ॿियो नंबर दुरुस्त काल आई कुर्बान अली ख़ासकेली, टियों दुरुस्त जवाब आयो रुस्तम पंवर साहब, ऐं चोथों दुरुस्त जवाब आयो ज़मवार मोहम्मद बचल शंभाणी साहब। इन खां सवाइ खोड़ सारा दुरुस्त जवाब आया ऐं अञा बि कॉलूं अचनि पयूं। कॉल्स महिरबानी करे तॾहिं कयो जॾहिं असां क्वेश्चन पुछूं था, सवाल पुछूं था, तंहिं करे नओं सवाल पुछी था वठूं पर इन जी कॉल कंदो ब्रेक खां पोइ। फ़िलहाल कॉल न कजो, पहिरीं बि गौर कजो त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे। हाज़िर आहे ॿियो सवाल, ही आवाज़ कंहिंजो आहे।

ॿुधाइणो आहे त ही आवाज़ कंहिंजो आहे, नंबर हूंदो 0334352578 पर हुन ते कॉल कंदासीं टीह वारे ब्रेक खां पोइ, यानी 5:30 जो कमर्शियल ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं तव्हांजो कॉल्स वठणु शुरू कंदासीं। फ़िलहाल कॉल नथा वठूं छो त कमर्शियल ब्रेक ऐं टाइम चेक हूंदो आहे, मजबूरी आहे त असां टाइम चेक ऐं ब्रेक खे टाइम ते ऑन एयर कयूं। ही सवाल आहे, हिन खे ॿुधंदा था हलजो ऐं यादि कजो, सर्च करे वठो त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे, ॿुधी वठो गौर सां। मां ब्रेक में वञा पियो, थोरी देरि में वापसि अची बाक़ी तव्हांजो कॉल वठंदसि ऐं ॿुधंदासीं, पुछंदासीं त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे। पहिरीं ॿुधी वठो गौर सां।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
0: GFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

जी जना वेलकम बैक अमांगे बलिकार चाहूं था मां बुधे पे जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जे जी एफ एम सखर जी एफ एम लाड़कानू जी एफ एम मोरो जी एफ एम मेरापुर जी एफ एम मीरपुर खास जी एफ एम सकरण जी एफ एम मटियारी ए जी एफ एम मातली शो आहे सिंधड़ी जी शाम ए सिंधड़ी जी शाम में अवां जे शो में अवां जो मेज़बान आहे यूनिस बकारी आवाज़ जी दुनिया जा जो का सवाल सिलसिले जो नालो आहे गीत पिरोली असा पुछोसी ही आवाज कहजो आहे

हिन जो पहिरियों दुरुस्त जवाब मातली खां सजाद काज़ी साहब जो। सजाद काज़ी साहब तव्हां लिखियो त हिन जो जवाब आहे हुमेरा चना। बिल्कुलु तव्हां सही चयो, ही आवाज़ आहे हुमेरा चना जो। ॿियो दुरुस्त जवाब आयो मोहम्मद सलीम अहमदाणी साहब जो। ऐं वेलकम चवंदासीं तव्हांजी कोशिश खे बि सलाम पेश कंदासीं। तव्हांजो आयो दुरुस्त जवाब। थैंक यू, भलीकार ऐं मुबारकूं। टियो दुरुस्त जवाब आयो मुकेश कुमार जो। ऐं मुकेश कुमार साहब वेलकम चवंदासीं तव्हांखे, तव्हांजो दुरुस्त जवाब हुयो। ऐं चोथो जवाब आजिज अलह बचायो नुहाणी साहब जो। थैंक यू भलीकार, तव्हां सभिनी खे मुबारकूं। ऐं अवां सभिनी जा वॾा वर्ड अवां असांखे सही जवाब ॾिनो। ॿिया बि खोड़ सारा दुरुस्त जवाब हुआ, पर छाकाणि जो नंबरिंग पोइ ते अची वई। पहिरियां चार दुरुस्त जवाब असां अनाउंस कया, बाक़ी हर माण्हू पंहिंजो नालो पंहिंजो तारुफ़ करायो। थैंक यू भलीकार चवंदासीं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, टियों सवाल पुछी वठो। त पोइ हाज़िर आहे गीत पिरोली जो टियों सवाल। ही आवाज़ कंहिंजो आहे? पहिरीं आवाज़ ॿुधी वठो, पोइ कॉल कजो। काफ़ी महिरबानी, विच में कॉलूं कंदा पिया आहिनि, इन जे करे आवाज़ चेंज थिए थो, तव्हांखे ख़बर न पवंदी, विनर न थी सघंदा। इन करे पहिरीं कॉल खां पहिरीं आवाज़ ॿुधो ऐं नंबर डायल कजो 0334352578 ते ॿुधायो ही आवाज़ कंहिंजो आहे।

0: तुझे कूड़न कूड़न वायदंते इतबार कयम ही आवाज कहजो आहे
1: छो प्यार कयम तुझे कूड़न कूड़न वाय
0: बुधायणो आहे त हिन फनकार जो नालो छा आहे जल्दी जल्दी सा डायल करियो 0334352578 ते अवां जो इंतजार आहे पहिरीं कॉल कंहिंजी थी अचे ॾिसी था वठूं हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब ऐं किथां खां सखर मां शायर अली मोहम्मद मीराणी साईं असां अॼु आवाज़ पुछियो आहे हीअ आवाज़ कंहिंजो आहे तव्हां ख़बर आहे हीअ आवाज़ कंहिंजो
2: आहे
0: मंज़ूर सखीराणी तव्हां चयो आहे तव्हांखे पहिरीं त वेलकम था चऊं भलीकार महिरबानी मोहबतूं कोशिश कंदासीं तव्हांजो जेको दुरुस्त जवाब जे इंतज़ार में हूंदासीं पर ही मंज़ूर साहिब आवाज़ कोन्हे अञा थोरी कोशिश कजो ठीकु आहे साईं महिरबानी लख थोरा ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हैलो अस्सलाम
2: वालेकुम
0: अस्सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां तलार का डंगणा साहब हुसैन डंगणो ॿुधायो तव्हां ही आवाज़ कंहिंजो आहे नवीद डंगणे जो न कानो कंहिंजो
2: आहे
0: हाणे ॾिसो ही वरी शब्बीर अली डंगणो बीठो आहे पर तव्हां खां असां हिकिड़ो सवाल पुछियो रेडियो ॿुधी कॉल करियो दोस्तो ईअं नथो थिए त तव्हां इहो ॿिए खां ॿुधी कॉल न करियो प्लीज रेडियो ॿुधी कॉल करियो छो त अॼु हले पियो एॾो वॾो सख़्तु मुक़ाबिलो उन ॿुधाइणो आहे त इहो आवाज़ कंहिंजो आहे हाणे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम जी जनाब आवाज़ अचे पियो हलो अस्सलाम वालेकुम ओके ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहिब ऐं किथां खां
2: साईं
0: ॿुधो ॿुधो न को बि हिकिड़ो नालो ॿुधाईंदो हिकिड़ो को बि नालो धुको न लॻंदो न या वारो जवाब कोन ॾींदासीं को बि हिकिड़ो ॿुधायो नजफ अली थैंक यू वेरी मच मां तव्हांखे वेलकम चवां थो भलीकार चवां थो ॾाढी ख़ुशी थी तव्हां असांखे कॉल कई महिरबानी मोहबतूं मिठा माण्हू भलीकार अञा बि कोशिश कजो छो त ही नजफ अली आवाज़ कोन्हे थैंक यू मौज़ूस ख़वातीन आवाज़ ई दुनिया जो सवाल ही आवाज़ कंहिंजो आहे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम अदा गोट बाबू वेरो थरपारकर खान दिलीप कुमार मेघवाड़ गलाए ही आवाज़ तुफ़ैल संजराणी जो
0: तुफ़ैल संजराणी जो अच्छा थैंक यू कोशिश करण लाइ महिरबानी दिलीप कुमार तव्हांजी कोशिश खे सलाम था पेश कयूं पर ही आवाज़ तुफ़ैल साहिब जो न आहे अञा कोशिश कजो ठीकु आहे थैंक यू महिरबानी जनाब ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां नज़ीर अहमद मंगरियो साहिब ही आवाज़ कंहिंजो
4: आहे
0: आसिफ़ सियाल जो तव्हां लिखियो आहे अच्छा जी तव्हां कोशिशि ॾाढी ज़बरदस्त पिया करियो तव्हांखे वेलकम था चऊं भलीकार महिरबानी मोहबतूं अञा बि थोरी कोशिशि जारी कजो छो त ही आसिफ़ सियाल साहिब जो आवाज़ कोन्हे थैंक यू मौज़ूस ख़वातीन हज़रात असां जेको सवाल पुछूं था हुनखे थोरो गौर सां ॿुधो पहिरीं ॿुधी वठो ही आवाज़ कंहिंजो

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: हमलन में जख्मी तेल शहरियन की जल्द सेहतियाब इलाज दुआ हुआ है. पाकिस्तान सऊदी सलामती है.

0: पर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

दुरुस्त जवाब आहे आसिफ मल्हा। ही आसिफ मल्हा जो आवाज़ आहे ऐं आसिफ मल्हा जे हिन आवाज़ खे तव्हां सुञाणण जी कोशिश कई, पर पहिरियों दफ़ो अॼोके हिन सिलसिले जे हिन पहिरें जेको हीउ टियों नंबर सवाल हो इन जो को बि विनर कोन्हे। इन जे करे फ़िलहाल कोशिश कंदासीं त असां सवाल चेंज था करियूं। हूअं त दुरुस्त चार सवाल चार विनर हूंदा आहिनि ऐं 15-20 दुरुस्त जवाब अची वेंदा आहिनि, सवाल चेंज करणो पवंदो आहे, पर अॼु असां मजबूरनि छाकाणि जो असां वांखे वधीक परेशान करणु नथा चाहियूं, असां वांखे खिलाइण था चाहियूं दोस्तो, त पोइ खिलंदे खिलंदे हिकिड़ो नओं सवाल थी वञे। हाज़िर आहे नओं सवाल, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? काफ़ी दोस्त बिना सवाल ॿुधण जे कॉल था कनि, प्लीज़ ईअं न कयो। कॉल पहिरीं आवाज़ ॿुधो, हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे? ॿुधी पोइ सवाल कॉल कयो।

जेकॾहिं तव्हां हींअर हिन रेडियो खे ॿुधो पिया त पोइ तव्हां मथे आसमान ॾिसो झुड़ आहे, जेके जाबलू इलाइक़नि में उहे बि ॾिसनि झुड़ आहे, जेके भेटुनि ते वेठा आहिनि उहे बि ॾिसनि झुड़ आहे। हिन मिठे आवाज़ खे ॿुधायो त हीउ आवाज़ आहे कंहिंजो।

मोबाइल हथ में खणो, टाइप करियो नंबर 0334-3525-786 बुड़ी 324-3525-786 ते कॉल करे बुधायो ही आवाज कहंजो आहे।

जी जनाब, जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क के जी एफ एम लाड़काणू, जी एफ एम सखर, जी एफ एम मीरपुर खास, जी एफ एम मोरो, जी एफ एम मेहरापुर, जी एफ एम सकरंड, जी एफ एम मटियारी, जी एफ एम मातली से गडियल शो तुम बुध पे सिंधड़ी की शाम अवन आर जे यूनिस बकारी मुखातिब है। आवाजी दुनिया जो सवाल पुछी रहा हूं, ही आवाज कहो है। सोचो, समझो, बुद्धो, बुधायो तो ही आवाज कहो है।

0: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦੀ ਕੇਰ ਹੈਲੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੀਕੁਮ ਜੀ ਕੇਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕਿੱਥਾਂ ਖਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੋਲੰਕੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਆਯੋ ਠੀਕ ਆਯੋ
1: ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਸਾਈਂ ਤਵਾਂ ਬੁਧਾਯੋ
0: ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾ ਕਿਰੋੜੇ ਕਰਮ ਆਯਨ ਬੁਧਾਯੋ ਤੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੰਜ ਜੋ ਆਹੇ समीना कंवल जो आवाज आहे वाह वाह वाह वाह कोशिश करण ला तमाम घणी मेहरबानी पर पर पर पर अन्या थोरी कोशिश कजो ठीक आ छो तो जवाब सही कोने ओके जनाब दिसनासी हाणे काल ते केर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी केर है किथा का बाबर चांडियो साहब ही आवाज केंजो आ शाजिया खुश्क साहिबा जो आवाज़ तव्हां चओ था महिरबानी चांडिया साहब कोशिश कर महिरबानी कोशिश कई तव्हां महिरबानी सर अॼु दोस्तनि जा नाला कोन पिया खणूं असां अॼु रुगो सवाल ऐं जवाब ताके जज खां जजू कालूं अची वञनि हाणे ॾिसंदासीं कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम जी केरु साहिब ऐं किथां था जी मकबूल भाई गोठे सभी छोकर आवाज एक जड़ा है मुझे आवाज सभी सजे गोठ के छोकर एक जड़ा था बुधने में अचान ही आवाज क्यों जो है खबर तो समीना कंवल मेहरबानी लख तो रहा कोशिश करण ला पर ही जवाब दुरुस्त कोने थैंक यू ओके जनाब दिसनासी हाणे कॉल केर तो करे हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम
0: जी केर साहब है किथा का
1: पुन्नू खान पवार का रुस्तम अली पवार
0: अच्छा रुस्तम अली पवार साहब खुश आयो ठीक आयो
1: शुक्र आलाय सानन ता बा खुश हो
0: सेवण शरीफ जे वेजो तमा जबलन जे कतारन के महसूस करयो पया ही आवाज बुधायो बुधायो त ही आवाज केन जो आ
1: यो आवाज दीबा कंवल जो पयो लगे असा के
0: दीबा कंवल जो लगे पयो पक्की गाला
1: जी जी असा के दीबा कंवल जो आवाज पयो लगे
0: माने पक्को लाक करे छियो पक्की गाल है ना जवाब दुरुस्त कोई कोशिश कर थैंक यू भलीकार चवंदासी थैंक यू थैंक यू ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम हलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम केरु साहिब ऐं किथां खां मोहम्मद हाशिम मोहम्मद हाशिम साहब ही आवाज केन जो आ
1: शाजिया गुल जो आ
0: शाजिया छाता चओ शाजिया गुल साहिबा जो आवाज अच्छा शाजिया साहिबा जो आवाज कोनी अवां जी कोशिश ला तांके सलाम पेश ता कयो मेहरबानी मिठा मानो ओके जनाब दिसनासी हाणे कॉल ते केरु हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम बाबू दरबार कर दिलीप कुमार मेघवाड़
0: ही आवाज जी जी जरीना बलोच जो है दिलीप कुमार सफा सही तो चवी या धुको पियणी
2: सफा सही पे चवे मुमकिन भी को
0: न तो जवाब बो सोचा सोचा कंप्यूटर छा तो चे कंप्यूटर चवे तो जवाब
2: जवाब
0: कंप्यूटर चवे तो जवाब गलत है ओके जनाब दिसनासी हाणे कॉल ते केरु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सलाम
0: जी केरु साहिब आहे किथां खां जी ही आवाज़ कंहिं जो आहे दीपा शहर जो कोशिश करण लाइ तमामु घणियूं महिरबानी लख थो हरा मिठा माण्हू ओके जनाब कॉल मां वठण जे ब्रेक वठण पियो वञा ही आवाज़ कंहिं जो आहे हलो अस्सलाम वालेकुम जी छा नालो वरितो तव्हां अच्छा चांडिया साहब ही आवाज़ कंहिं जो
4: आहे
0: शबाना गुल जो अच्छा जी कोशिश करण लाइ तमामु घणी महिरबानी थैंक यू ऐं वॾा वॾ तव्हांजा पर जवाब अञा बि थोरी कोशिश कजो ओके जनाब ॾिसंदासीं हाणे काल ते हलो अस्सलाम वालेकुम जी नालो छा ॿुधायो नियाज़ हुसैन मेहर साहब ही आवाज़ कंहिं जो सुरैया सुमरो थैंक यू सर कोशिश करण लाइ लख थोरा ख़ुशि हुजो मेहर साहब मोहबतूं سر مجھے اکھن تے ماں بالکل وعلیکم السلام چواں تو قرب سائیں محبت لکھت ہو جی جناب ہاں بریک وٹھنو ہے چو تو بریک کا سوا کا شے کون ہوندی ایکڑو شارٹ کمرشل بریک ہوندو ان کا پوئے ملے داسی پان اد کلاک جو باقی ساتھ ہوندو کیڑا نہ ونجو مائی جو واپس تو
4: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
5: یہ

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड कंदी आहे नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

जी जनाब वेलकम भलीकार खुश आमदीद यकीन अवां सभिनी महिरबानी लखथोरा जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क सां नीहे जो नातो निभायो पिया अवां सभिनी जूं ये मोहबतूं यादगार आहिनि हमेशा याद रहंदियूं किरोड़े कुरब सभिनी महबूब दोस्तनि भेनरुनि ऐं भाइरनि जा उहे भेनरूं उहे भाइर जेके गौर सां ॿुधनि पिया उन्हनि सभिनी जूं महिरबानी असां सवाल पुछियोसीं त हीउ आवाज़ कंहिंजो आहे

दोस्तो असां खां पुछियो हीअ आवाज़ कंहिंजो, काफ़ी महिरबानी कोशिशि कई, पर अॼु ही ॿियो सवाल आहे जंहिंजो बि जवाबु हेसि ताईं को बि दुरुस्त कोन आयो आहे, पर जिन बि कोशिशि कई आहे, मूं तव्हांखे पहिरीं बर्स कयो त असीं हर उहो गानो प्ले पिया कयूं जंहिंजो ॿिए सां आवाज़ मैच थींदो हूंदो, तंहिं करे तव्हांजी कोशिश ते बि असीं ईअं नथा चऊं त तव्हां ग़लति आहियो, पर एतिरो मिड़ी खिल भोग में चऊं था। बाक़ी हक़ीक़त में तव्हां जूं महिरबानी आहिनि, तव्हां एॾी वॾी महिनत करियो पिया, काफ़ी महिरबानी आहिनि, सर्च बि कंदा हूंदा, नेट ते सर्च कंदा हूंदा, छो त हिक जहिड़ा आवाज़ आहिनि, जेसी गानो लभे तेसी ताईं असांजो जवाब चेंज थी वेंदो आहे। हाणे असांखे ॿुधायूं था त हीउ आवाज़ जंहिंजो को बि विनर कोन्हे, को बि दुरुस्त जवाबु कोन आयो आहे, उन लाइ हीउ आवाज़ आहे, हीउ आवाज़ आहे फरज़ाना गुल जो। फरज़ाना गुल जो ही आवाज़ जंहिंखे कंहिं बि कोन सुञातो, कोशिश करण लाइ मुंहिंजी महिरबानी, काफ़ी महिरबानी, मुख़्तलिफ़ नाला वरिता, फरज़ाना गुल जो ही आवाज़ यादि रखी छॾियो, छो त कॾहिं न कॾहिं वरी रिपीट सवाल थींदो। हाणे जेसिताईं असां अव्हां खां बल्कि तव्हां खां सवाल पुछी था वठूं, इन जे करे हाज़िर आहे नओ सवाल, ही आवाज़ कंहिंजो आहे? वाह साईं वाह,

0: वालेकुम अस्सलाम जी, केर साहब हैं किथा का?
1: ए सद्दाम नगर जो बोला है तने गोला नगर का
0: वरी नालो बुधायो।
1: सद्दाम नगर तने गोला नगर का
0: सद्दाम नगर ही आवाज केंजो है
1: तमी ना गोदी के है सर।
0: पक्की गाल आ?
1: हां सर पक्की गाल।
0: सद्दाम लगारी साहब दिसो धोको न आण जो
1: ना धोको कोना घर आवाज नहीं के तेरी में लगे यो तो तमी ना गोदी आवाज
0: है माना मैच करे पियो आवाज।
1: जी जी।
0: चलो मैं कंप्यूटर के रिक्वेस्ट करें, कंप्यूटर प्लीज असांजे सद्दाम लगारी साहब के हवाले से सोच तेसि ताईं मां अवां के दोस्तों बुधाएं तो ब्रेक वठण तो चाहें, शॉर्ट ब्रेक है, अल्लाह ताला जरदारी आवाज बुधी था वठूं। मां वापस अची यो वरी गानो प्ले कंदस सबनी के बुधाईंदस आवाज केंचो। जी।

जी जनाब असां पुछो सी ही आवाज कंहिंजो आहे तमाम नेटवर्क जे तमाम स्टेशननि तां ही आवाज प्ले थियो अवां सभिनी महिरबानी दुरुस्त जवाब अची विया आहिनि असां कुझु अनाउंस करे वठंदासीं त पहिरियों दुरुस्त जवाब पहिरीं ॿुधाए वठूं त ही आवाज आहे जी हा जनाब ही आवाज आहे समीना गुडी जो दुरुस्त जेके हूअं त खोड़ सारा जवाब दुरुस्त आया पहिरियों नंबर दुरुस्त जवाब आयो गुलाम रहीम बलोच जो यानी हिन सवाल जो विनर गुलाम रहीम बलोच बे नंबर ते शाहनवाज लाशारी टे नंबर ते दुरुस्त जवाब आयो अरशद मर्री ऐं आख़िर में सद्दाम लगारी जो चोथों नंबर दुरुस्त जवाब बाक़ी तमामु दोस्तनि जा दुरुस्त जवाब हुया थैंक यू वेरी मच तव्हां सभिनी बिल्कुलु सही जवाब ॾिनो तव्हांजी हिन मुक़ाबले में शमूलियत ते महिरबानी लख तौरु सो जनाब उन खां अॻे जो यारो यारी करे अवांजो यूनुस बकारी मोकिलाए वञण महिल को दर्दीलो गीत हूंदो ॿुधी वठो

अॼु जो शो कीअं लॻो पंहिंजे फीडबैक खां ज़रूरु आगाह कजो। वरी ईंदड़ हफ़्ते मिलंदासीं जेके नेटवर्क शोज़ हूंदा, बाक़ी लोकल शोज़ में त मां तव्हां सां हूंदुसि गॾु गॾु। रोन दिल चरी किथे थी हुनजी सरे। उर्स चांडीअ जे हिन सदाउनि सां अॼु को प्रोग्राम पुॼाणी जे पहुचे पियो। असांजी सॼी टीम GFM 88 रेडियो नेटवर्क जे तमामु रेडियो चैनल्स, तमामु स्टेशन्स जे मैनेजर्स, तमामु टेक्निकल टीम ऐं तमामु असांजी जेका टीम आहे GFM रेडियो सथ जी जेका टीम आहे, सभिनी जो साथ सलामत हूंदो। तव्हां सां गॾु फ़क़ति तव्हां खां यारो यारी मोकिलाए थो यूनुस बकारी। न थो असां त जिते बि पंहिंजो पेर हुजे उते ख़ुशियुनि जा ढेर ऐं ख़ैरी ख़ैर हुजे। उस्तादनि वालदेन ऐं वॾनि जूं दुआऊं, निमन जूं छाऊं ऐं ख़ुशियुनि वारियूं हवाऊं मुक़दर बणजनि। साथ सलामत, सिख सलामत, अलाह निगहबान।

आहे, पंहिंजे मफ़ादनि जो दिफ़ा जारी रखियो वेंदो। सिंध असेंबली में एमकेएम जो ॻाल्हाइण जी इजाज़त न मिलण ते एहतजाज स्पीकर डाई साॾो नारेबाज़ी। एमकेएम जे एहतजाज दौरान सिंध असेंबली वफ़ाकी हुकूमत खां पेट्रोल टां लेवी ख़तम करण वारो ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सिंध असेंबली जो इजलास स्पीकर अवेस कादर शाह जी सदारत हेठि शुरू थियो त अपोजिशन लीडर अली ख़ुर्शीदी असेंबली मेंबर्स पारां ऐबान वारियूं वीडियो सोशल मीडिया ते रखण वारो मामिलो उथारियो। स्पीकर चयो त मेंबर्स जा नाला ॾियो, एमकेएम मेंबर्स मामले ते एहतजाज शुरू कयो। चारसन अंजार चयो त सिंध हुकूमत लेवी ख़त्म नथी करे सघे, वफ़ाक़ खां लेवी ख़त्म करण जो मुतालबो करे सघे थी। स्पीकर इजलास सुभाणे ताईं मुलतवी करे छॾियो। कराची जे वापारी मीर रज़ा केस जी जांच कंदड़ अदालती कमीशन घरू वजी चारसन अंजार खे ख़मीस ते तलब करे वरितो। कमीशन जी कार्रवाई दौरान एडवोकेट जनरल जे रवैये ते बि अफ़सोस ऐं हैरत जो इज़हार। अदालती कमीशन मीर रज़ा केस जे जोकी कार्रवाई जो लिखित में हुकुम जारी करे छॾियो। अदालती कमीशन चयो आहे त एडवोकेट जनरल पारां अदालती कमीशन जी कार्रवाई में रंडक वंडण अफ़सोसनाक आहे। सिंधी आला तरीन कानूनी आफ़िसर पारां उथारियल एतराज़ बि हैरान कंदड़ आहिनि। कंहिं सवाल जो कार्रवाई जो हुजण या न हुअण कमीशन जो अख़्तियार आहे। कमीशन जो मक़सद बि केस बाबति हक़ीक़तूं अवाम साम्हूं आणणु आहे। चालीसनि हज़ार ख़मीस ते कमीशन अॾो पेश थी आहे। सिंध हाई कोर्ट फहमीदा पिताफ़ी केस में आई जी सिंध खे शोकास नोटिस जारी करे छॾियो। आई जी सिंध घरू सेक्रेटरी डीआईजी सखर एस एस पी घोटकी ऐं जांच आफ़िसर खे 21 सेप्टेम्बर ते ज़ाती तौर पेश थियण जो हुकम ॾेई छॾियो। अदालत नारी फहमीदा पिताफ़ी खे सरदार अब्दुल बारी पिताफ़ी हवाले करण बाबति बि एहतजाज जो हुकुम ॾेई छॾियो। फहमीदा जी बाज़ियाबी ऑपरेशन जी निगरानी आई जी हवाले। डीआईजी सखर ऐं एस एस पी कोटकी खे आई जी सिंध जी निगरानी में कम करण जो हुकम। जस्टिस तस्नीम सुल्ताना जी अदालत लिखित में ऑर्डर जारी करे छॾियो। अदालत चयो त जेकॾहिं को पुलिस ऑफिसर मुलविस हुजे त कानून मूजिब कार्रवाई कई वञे।

0: मगर यहाँ पे मैं बैठा था तो तीन बच्चे आई मेरे पास, उन्होंने कहा कि अंकल हमें भूख लगती है, 3 बजे हम स्कूल जाती हैं, स्कूल से घर जाती हैं, और 3 बजे हम पहुंचती हैं, 2:30 बजे तक स्कूल होता है, हम भूखी होती हैं, हम घर जाती हैं, ये टाइम आपने जो 1 घंटा पढ़ाया है कम तो मेरे का बेटा हो गया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंह की हो तो आवाज भी सिंह की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: अमर सिंध जे सींध में हिक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

ग़ज़ल तुंहिंजे अदाउनि ते लिखियो मूं चंड हेठां ग़ज़ल तुंहिंजे अदाउनि ते लिखियो मूं चंड हेठां मिसल चंड जे हसीन चेहरो पसियो मूं चंड हेठां जिगर ते दाग कारो ॼण चिठो हुन जे थियो ग़ज़ल जॾहिं लिखी पूरो रखियो मूं चंड हेठां।

तू याद आए हवा का हो पतो तुझो पुछो मु चंड हेठा हलियो जो सार जो खंजर सिवा तो हाँ उते हो पची बजरी साड़े खामी लुछो मु चंड हेठा अची तो प्यार मां मुखे भरियो भाकुरन में ही जागदे सपनो डिठो मु चंड हेठा ए मुझा चंड तोले चंड ब मूसा रुनो हो विछोड़े जो गजल वेठे चयो मु चंड हेठा अस्सलाम वालेकुम जी एफ एम मातली 90.4 जी लाइव स्टूडियोस मां प्रोग्राम रसरियान सान करे वहां जो पंजो आरजे मोहम्मद खान मेहरी स्टूडियो चिनियर शाहनवाज खास के लिए स्टेशन मैनेजर सर यूनुस बकाई साहब के साथ सान हाजिर खिदमत आयूं जिते जिते जे माग ही असन मुसाफिर आवाज अवां जे सुंदर सुंदर समातन ताई पहुंचंदो होजे उनन मिलनी मेहरबानन जी खिदमत में प्यार सिक उकीर वंदो सलाम शाल कबूल पयो अरणा सिप नंबर चे अजो के प्रोग्राम में जेकॾहिं तव्हां बि शामिल थियण चाहियो था त बिल्कुलु शामिल थी सघो था तरीक़ेकार तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एमटीए थोरी स्पेस ॾींदा पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾींदा जी 8881 ते जीअं अव्हांजा मैसेजेस असांखे मौसूल थींदा असां फौरन पंहिंजे बज़म में कंदासीं शामिल सभिनि तव्हांजा कहिड़ा हाल आहिनि उमेद था कयूं त तव्हां हूंदा ख़ुशि ऐं आबाद ऐं पंहिंजनि प्यारनि सां यकीन आहिनि

अब उसका साथ क्या मांगूं, जरा सी उम्र है कम, गम से निजात क्या मांगूं। भलीगार चवंदा जी सभी खूबसूरत समातुन के जिन जिन मेहरबान असा हाँ हाँ जॉइन किया ट्यून के जी एफ एम मातली 90.4 के रसरियाण में अजाऊं तां सां मुखातिब तव्हांजो पंहिंजो आर जे मोहम्मद खान महेरी। जिते जिते जंहिंजे माॻी असांजो मुसाफ़िर आवाज़ तव्हांजे सुंदर सुंदर समातुनि खे छुई रहियो आहे, जेकॾहिं तव्हां प्रोग्राम जो हिसो बणजण चाहियो था, असांखे हिकिड़ो मैसेज कंदा। मैसेज करण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो, घोट जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾींदा।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5 Day Beauty Plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
6: सुनते रहो GFM 90.4।
7: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
4: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
4: जी हा 2315525786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

वरी कार चवंदासीं सभिनी खूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी सां हाणे हाणे जॉइन कयो आहे ट्यून कयो आहे जी एफ एम मातली 90.4 खे रस रिहान में ऐं तव्हां सां मुखातिबु तव्हांजो पंहिंजो आरजी मोहम्मद ख़ान मेहरी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा एम टी ए थोरी स्पेस पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 881 ते असांखे सेंड करे ॾियो जी जी तव्हांजा मैसेज अचनि पिया हुनखे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलंदासीं वफ़ा गुलाम रहीम भलो जुड़बी थरपारकर खां यादि कनि पिया चवनि था त सलाम मिठा माण्हू प्रोग्राम लाजवाब आहे कनायूं पिया वफ़ा गुलाम रहीम बलोच इहे तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि ऐं तव्हांजूं समातूं ॾाढियूं सुहिणियूं हूंदियूं आहिनि ॾाढियूं लाजवाब हूंदियूं आहिनि वॾी महिरबानी शौकत अली ख़ासके अली फ्राम अलीपुर मोरी खां असांखे यादि कयो आहे लिखंदा आदाब के प्रोग्राम में पहिरीं बार शामिल हुआ हूं साईं भलीकार तव्हांखे भलीकार वेलकम चवंदासीं तव्हां लिखियो त मास्टर मंज़ूर खे ज़रूर प्ले कजो इनशाला भाई शौकत अली ख़ासि कली फ्राम अलीपुर मोरी खां तव्हां असांखे यादि कयो ऐं मोहबतुनि जे हिन सफ़र में तव्हां थिया आहियो शामिल तव्हांजो इंतिखाब उहो मुझको यादि रखेगा या फिर भुला देगा उसी का काम था उसी की रज़ा पे छोड़ दिया खूबसूरत वॾी महिरबानी तव्हांजो प्रोग्राम में शामिल थियण असांजे लाइ ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे वॾी महिरबानी असांखे यादि कयो आहे कुर्बदार किरड़ भील वॾी महिरबानी तव्हांजी तव्हां हमेश मोहबतनि में यादि कंदा आहियो तव्हां चयो पिया त राति जे हिन साथ में ख़ूबसूरत प्रोग्राम तव्हांजो वॾी महिरबानी जॾहिं ख़ूबसूरत समातूं असांखे कनाईंदियूं आहिनि त असांजो शो ॾाढो लाजवाब थी वेंदो आहे सो कुर्बदार किरड़ तव्हांजा कुर्ब आहिनि पंहिंजी बज़म आहे तव्हांजो पंहिंजो शो आहे रस रिहाण में वधीक रस तॾहिं शामिल थी वेंदो जॾहिं तव्हांजा नाला सुहिणा नाला प्रोग्राम में शामिल हूंदा ऐं असांखे ख़बर पए त अॼु असांजो मुसाफ़िर आवाज़ किथे किथे उॾाम करे रहियो आहे उहा असांखे तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं तव्हांजा सुहिणा सुहिणा नाला असां ताईं पहुचंदा हिन सफ़र मोहबतुनि जे सफ़र में तव्हां ज़रूर थियो शामिल लाड़ी हिनाई हवाउनि में मातली जो ख़ूबसूरत आवाज़ आहे जी एफ एम मातली 90.4 लाड़ी हवाउनि जे आधार असांजो मुसाफ़िर आवाज़ तव्हांजे समातम ताईं यकीन पहुचे पियो छिनी तो यारी ख़बर हाणे पवंदी असां अवां सां यारी कोन छिनी आहे ऐं अवां बि न छिनजो ऐं अवां सां हिकिड़ो मैसेज कजो अवां असांखे जल्दी बिल्कुलु मैसेज तव्हांजा अचनि पिया धड़ा धड़ अचनि पिया

0: जॾहिं लाड जी नगरी तां सिज पंहिंजो आख़िरी सफ़र में वेंदो आहे, पंहिंजा पर्प खेड़े हमेशा जे लाइ न पर ॿिए ॾींहं जे लाइ ग्रुप थींदो आहे, त लाड़ जूं मदर हवाऊं जेके आहिनि उन्हनि जे आगोश में मातली जो ख़ूबसूरत आवाज़, मातली जूं सदाऊं
1: आहिनि।
0: यकीन ई असांजो आवाज़ लही लही परे ताईं वञे पियो। पारकर खां असांखे यादि कयो आहे वफ़ा ग़ुलाम रहीम बलोच।

0: दिल थी चवे तो सब
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जेकर तवां के मैदे की तकलीफ, सीने की जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंध हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 0312-34-01-287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
3: पाकिस्तान की ज्यादातर जमीनें फास्फोरस की कमी का शिकार हैं, इसीलिए सोना लाया है NPS 3 की ताकत के साथ। इसमें मौजूद फास्फोरस दे जड़ों की बढ़ोतरी और फैलाव में इजाफा और सल्फर नाइट्रोजन की आफादियत को बढ़ाए, जिससे फसल को इब्तदाई मरहले से ही जरूरी गजाई अज्जा मिले। इसके हर दाने में तीनों अज्जा की यकसा मौजूदगी से फसल को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, जिससे हो पैदावार में इजाफा और किसान को मिले ज्यादा मुनाफा। 3 की ताकत मिले, फसल भरपूर खिले।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, थे में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

बहाने बहाने से हम तेरी बात करते हैं, बहाने बहाने से हम तेरी बात करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकात करते हैं। इतनी बार आप सांस भी नहीं लेते जितनी बार हम आपको याद करते हैं। बलिकार चवंदासीं तव्हां सभिनी ॿुधंदड़नि प्यारनि प्यारनि समातनि खे, जेके महिरबानी असां सां हाणे जुड़ी चुका आहिनि। उन्हनि सभिनी खे भलीकार चवंदासीं। उमेद त तव्हां सभु ख़ैरियत सां हूंदा ऐं पंहिंजे प्यारनि सां गॾु ख़ुशियुनि जा लम्हात गुज़ारे रहिया हूंदा। यकीन तव्हां ॿुधी रहिया आहियो ऐं तव्हांजो पंहिंजो पसंदीदा FM रेडियो 90.4 मातली। अॼु जे शो में असां वटि आहिनि तमामु प्यारा सिंधी नगमा ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हांजी दिलि जूं ॻाल्हियूं, तव्हांजा मोकिलियल ख़ूबसूरत पैगाम। सो यकीन मौसम तमामु दिलि पज़ीर आहे ऐं हवाउनि में हिकु ख़ूबसूरत ताज़गी आहे। जिथे बि आहियो गाॾी हलाईंदे सेट बेल्ट ज़रूरु ॿधो ऐं रेडियो जे सुरनि जो मज़ो वठो। जेकॾहिं तव्हां बि हाणे असांखे जॉइन कयो आहे ऐं तव्हां रस रिहाण प्रोग्राम में पंहिंजे ख़ूबसूरत नालनि जो रस भरण चाहियो था, त असां हिकिड़ो मैसेज कंदा। तरीक़ेकार बिल्कुलु आसान, मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTI, थोरी स्पेस ॾींदा, पंहिंजो नालो, ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 ते असांखे सेंड करे ॾियो।

ਮਿਲੇ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨੋਤਕਾਣੀ ਖਾਂ ਸਲਾਮ ਰਿਸ਼ਾਨ ਮੁਦਸਰ ਮੁਹੰਮਦ कामिल तासा याद कर मोहम्मद कामिल नोतकानी जुल्फकार अली तासा गडाए ता लिखे नाइस प्रोग्राम वडी मेहरबानी विलेज मोहम्मद यूसुफ नोतकानी का तासा के याद कयो आए सलाम आल सनस के ता सलाम चे नजीशान मुदसिर मोहम्मद कामिल नोतकानी जुल्फकार अली तासा गडाए नाइस प्रोग्राम ता चयो आए लखथोरा प्रोग्राम रस रहन के ता खूबसूरत चयो आए वडी मेहरबानी नाइस चयो आए कलकारा खां वफ़ा सजाद जो वरी मैसेज पहुतो आहे वफ़ा सजाद नदीम अकबर ऐं अलार खे खोसो वॾी महिरबानी प्यारा तव्हांजो वरी मैसेज पहुतो आहे

गोठ बाबू वीरो थरक खां दिलीप कुमार असांखे यादि कयो आहे। दिलीप चवे थो त अॼु तव्हांजी नशरियात साफ़ अचे पई। दिलीप कुमार मेघवार नूल राय तव्हां सां गॾु आहे। नूल राय मेघवार, दानिश कुमार मेघवार, सूरज कुल मेघवार, शंकर लाल मेघवार ऐं तव्हांजो शो लाजवाब आहे त

फौजीअ जूं सदाऊं चंड पिरीअ जे पार वञे थो। फौजीअ जा सभु गीत यकीन लाजवाब आहिनि। हीउ गीत मूंखे ॾाढो

लाड जूं हिनाई मधुर हवाऊं हुजनि, पिरी जी सार हुजे, फोजिया जो मधुर आवाज़ हुजे, जीएफएम मातली 90.4 ता असांजो शो रस रियान हुजे, पोइ त वाह वाह यकीन। शाहनवाज़ ख़ासि करे असांजो तमामु प्यारो मेहनती स्टूडियो इंजीनियर आहे, उहो बि चवे पियो त वाह फौजी वाह, महिरबानी शाहनवाज़, चवे त प्रोग्राम ॾाढो ज़बरदस्त थी रहियो आहे। शाहनवाज़ जो मेहनतूं बि आहिनि असां सां गॾो गॾु, असांजो मुसाफ़िर आवाज़ खे बहितर तरीक़े सां पहुचाइण में असांजा स्टूडियो इंजीनियर कमाल कंदा आहिनि। रब नवाज़ ख़ासि कहिड़ी बि असांजो बहितरीन स्टूडियो।

0: घटो भरसा खौफनाक हादसो, ट्रैक्टर ट्राली बिजली की तारन से टकराए जाने के नतीजे में तीन औरतों समेत छह जना फौत, 15 का जख्मी, वीडियो बोर्ड भरसा पलाल से भरल ट्रैक्टर ट्राली बिजली की तारन से टकराए जाने सबब करंट लगन के नतीजे में फरीदा हनीफ सिकंदर अनारिनो समेत छह जना फौत थी गया। फोतियन जा लाश जख्मी मकली अस्पताल मुंतकिल, इतला मिलने से फोतियन जख्मियों के वारिसन जो वो अंग भी अस्पताल मकली पहुंची वो। सिंध हाई कोर्ट फहमीदा पिताफी केस में आईजी सिंध के शोकास नोटिस जारी कर छो। आईजी सिंध घरू सेक्रेटरी डीआईजी सक्कर एसएसपी गोटकी ए जांच ऑफिसर के 21 सितंबर से जाती तौर पेश थियण जो हुक्म। अदालत नारी फहमीदा पिताफी के सरदार अब्दुल बारी पिताफी हवाले करण बाबत भी जांच जो हुक्म दई छो। फहमीदा की बाजियाबी ऑपरेशन आईजी हवाले, डीआईजी सक्कर एसएसपी गोटकी के आईजी सिंध की निगरानी में कम करण जो हुक्म। जस्टिस तस्लीम सुल्ताना जी अदालत लिखत में ऑर्डर जारी कर छो। अदालत चयो तो जडे को पुलिस ऑफिसर मुलविस हुए तो कानून मूजिब कार्रवाई कई वे।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ
3: मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली
2: आवाज की डोर से बंधा हुआ
4: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
5: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
6: छा तव्हां जोड़नि जे सूर, पुठनि जी तकलीफ़, कुल्हनि जे सूर या जिस्म जे नंढे वॾे सूर खां परेशान आहियो? छा इलाज कराए कराए थकिजी पिया आहियो? हाणे इस्तेमाल करियो ख़ात्माए दर्द कोरस, हिकु आज़मायल कोरस जेको जोड़नि, पुठनि, कुल्हनि ऐं जिस्म जे हर क़िस्म जे सूर में आराम लाइ तयार कयो वियो आहे। ख़ात्माए दर्द कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0302-36-36-879 ऐं 0312-34-01-287। ख़ात्माए दर्द कोरस, सूर खां छुटकारो, सुकून भरी ज़िंदगी।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस

0: खुशखबरी चाहियो था अवां जे घरन जो छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
0: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
0: सिंध जो आवाज़।

ਖਾ ਸਈ ਤਾਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਓ तुझे खास आई ताम असी बनायूं वटे उछले छदे वण जे लाम असी बनायूं वडो मशहूर आई तू मन्यो था प्यारा पर जितरो समझी तो एतरो गुमनाम असी बनायूं बलिकार चवंदा जी सभी खूबसूरत समातन के जिन जिन मेहरबान असा के हाने जॉइन कयो ट्यून के वजी एफएम मातली 90.4 के रस्त्रियान में अज आऊं तां सां मुखातिब तव्हांजो पंहिंजो आरजे मोहम्मद खान महेरी।

नोटो थरपारकर खां असांखे यादि कयो आहे रामचंद कुमार कोहली, गोविंद गुल कोहली ऐं कमलेश कुमार कोहली। तव्हां लिखियो प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे, लाजवाब आहे, अल्लाह आपको ख़ुशि रखे, आमीन। वॾी महिरबानी प्रोग्राम खे पसंदि करण जे लाइ पंहिंजी मौजूदगी जो

पहुचे पियो त असांखे ज़रूर तव्हां पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास ॾींदा ऐं मातली खां असांखे मुर्तज़ा बलोच यादि कयो आहे। मुर्तज़ा बलोच साहब वॾी महिरबानी, तव्हां मातली खां हमेशह पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास अर्पींदा आहियो। प्रोग्राम तव्हां लिखियो आहे ॾाढो ज़बरदस्त ऐं लाजवाब आहे। राति जी निसांत में तव्हांजो मधुर आवाज़ ऐं सच पुछो त ॾाढो मज़ो पियो अचे। मुर्तज़ा बलोच, वॾी महिरबानी।

रईस अज़ीज़ अला खान निज़ामाणी असां खे बाबड़ी जी खां यादि कयो आहे, वॾी महिरबानी तव्हां खे प्रोग्राम में भली कार। मैसेज असांखे तमामु घणा पिया करियो, इहे तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि, अञा बि तव्हांजा मैसेज ईंदा मूंखे प्रोग्राम में शामिल।

दिलो जो गोठ है झप्यो खास के ममस्ती पाड़ो हमेश याद कंदो है ड्राइवर रोशन अली पाड़ो ता स गड़ तान को अस्सलाम वालेकुम दुआए तल्ला पाक म के खुश सलामत के सलाम वफा गुलाम रहीम बलोच ए बिलावल बलोच के बड़ी मेहरबानी मामा सिद्दीक पाड़ो एंड ड्राइवर रोशन अली पाड़ो ताजा लख थोरा प्रोग्राम में शामिल थे।

गुड जुर्बी का वफा गुलाम मुस्तफा बलोच तां जो मैसेज पतो आए वडी मेहरबानी बिलाल बलोच बा मुस्तफा बलोच साहब लख थोरा तां सा के याद कयो है मातली सिटी का राजा सुना सुना नाला चन पे उनके प्रोग्राम में शामिल कंदा सी एक लाजवाब गीत जी तरफ हलंदा सी।

मोहम्मद हसन लुंड असां जो तमाम प्यारो प्यारो ॿुधंदड़ आहे लख थोरा त पंहिंजी मौजूदगी जो अहसास पियो आहे जनाब तुंहिंजी खिलता मां ठरां ठरां

0: असांजी कोशिश हूंदी आहे त सुठा सुठा गीत तव्हांजे समातुनि जो नाम
1: कजनि।
0: जुम्मन आबड़ो साहब सां यादि कंदो अलीपुर खां वॾी महिरबानी। जुम्मन आबड़ो यादि करे चुको
1: तुंहिंजी
0: जुम्मन आबड़ा ठरा मां ठरा। तुंहिंजो मैसेज पहुतो आहे, ॾाढी ख़ुशी थी आहे।

म्यूजिक सिलेक्शन जबरदस्त आए जियो आरचे वफा गुलाम रहीम बलोच सलाम शाह नवाज के शाह नवाज कंद धुणे करे वालेकुम सलाम चई रयो आहे वफा जो मेहरबानी वफा जा कुर्ब गोटी शहीद फाजिल राहू का मोहम्मद जुम्मन खास कर लीला इंडियन का याद किया ब्रदर मोहम्मद खान महरी साहब और जू आई एम फाइन वडी मेहरबानी मोहम्मद जुम्मन असन जो तमाम प्यारो बुधंदड़ है हमेशा मोहब्बत में याद कंदो है तो लख तौर तो आता के भली कार चंदा सी रस रियान प्रवाह में

न न जो की असन नशराज लई परे परे ताई वने बी मेहरबानन जा मैसेज सचन पिया जे मेहरबान असन मैसेज न कयो आए उन ताई आज असन नशराज पहुंच रही है त वो असन एडो मैसेज करे तरीके कर बिल्कुल आसान मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वनी करे टाइप कंदा एम टी थोड़ी स्पेस पे नालो गोठ जो नालो लिखी कर मैसेज 881 ते असन सेंड करे दियो नाला सोना हुंदा आहिनि प्यारा हुंदा आहिनि प्रवाह मां रस रियाण आहे रस रियाण में वधीक रस तॾहिं मिलंदो आहे जॾहिं तव्हांजा सोना नाला ऐं मैसेज ईंदा आहिनि राति जी निसांत में हिन ई हवाउनि में तव्हां ताईं जेकॾहिं असांजो मुसाफ़िर आवाज़ पहुचे पियो मौजूदगी अहसास सां ज़रूरु ॾियणु चाहियो त मैसेज जो तरीक़ो तव्हांखे ॿुधाईंदा हलो मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा आहियूं थोरी स्पेस पंहिंजो नालो ॻोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 881 ते सेंड करे ॾियो।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
4: जी हा, ॿुड़ी 331-25-25-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

मिठा महबूब मूं वटि कंहिं महिल महिमान थी वञे थी। मिठा महबूब मूं वटि कंहिं महिल महिमान थी वञे थी। कपे ई कंध कदमनि तां कंधसि कुर्बान थी वञे थी। बदन न फोड़ाए में फांगा उडर कागज खणी कांगा बुधा जबांग में बांगा चतू चजां थी वञे थी। मिठा महबूब मूं वटि कंहिं महिल महिमान थी वञे थी। तूं गुल गुलज़ार गुलबन जो अची तावीज़ थी तन जो मथे जो मोड़ मन जो मणियो मरजान थी वञे थी। मिठा महबूब मूं वटि कंहिं महिल महिमान थी वञे थी। वरीकार चवनि था सभिनी ख़ूबसूरत समातुनि खे जिन जिन महिरबानी असांखे हाणे जॉइन कयो ट्यून कयो आहे जीएफए मातली खे राति जे सांत में उन्हनि जा महबूब नाला असां ताईं पहुचनि पिया। असांखे हिन वक़्तु कनाइनि पिया महबूब समातुनि जा महबूब माण्हू निम थेबो साहब। साईं निम थेबो साहब बशीर सहतो तव्हां सां गॾु आहे, उस्मान सहतो ऐं हाजी सहतो सां गॾु गॾु असांखे कनाइनि पिया ऐं शफ़ी सहतो साहब कनाइनि पिया। वॾी महिरबानी साईं तव्हांजा प्यार पहुता, तव्हांजा ख़ूबसूरत अहसास पहुता, तव्हांजो ख़ूबसूरत समातूं राति जिन सांत में जीएफए मातली खे कनाइनि पियूं। तव्हांजो ख़ूबसूरत समातुनि खे वेलकम भलीकार चवंदासीं आरजे मोहम्मद ख़ान मेहरी पारां। प्रोग्राम रसरियाण में तव्हां शामिल थिया आहियो निम थेबो, बशीर सहतो, उस्मान सहतो, हाजी सहतो सां गॾु गॾु तव्हां असांखे कनायो पिया ऐं असांजो महबूब साथी बि ॿुधे पियो शफ़ी सहतो। जलाल चांडे खे तव्हां ॿुधणु घुरियो आहे, बिल्कुलु जलाल असां हाणे हाणे प्ले कंदासीं। तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां पंहिंजी मौजूदगी जो भलूड़ अहसास पियो आहे। यादि कनि पिया असांखे घोटु सोराब खान निज़ामाणी खां मोहबती मंगल निज़ामाणी साहब कड़ियो कंवर वेझो ई ॻोठु आहे सोराब खान निज़ामाणी। तव्हां सां गॾु आहे नंढड़ो अहसान मंगल निज़ामाणी, तव्हां लिखियो अदा। जी जी जी, तव्हां जेको गीत लिखियो आहे ज़रूरु ज़रूरु प्ले कंदासीं लख थोरा। ताजर अली छलगरी साहब असांखे यादि कयो आहे, सईद अली छलगरी, अमीर बख्श छलगरी साहब जो मैसेज पहुतो आहे। ताजर अली छलगरी जो वरी मैसेज पहुतो आहे, सईद अली छलगरी तव्हां सां गॾु आहे, अमीर बख्श छलगरी लिखो रहा साईं तव्हांजा खोड़ सारा अॼु मैसेज पहुता आहिनि। थिबो साहब वॾी महिरबानी, बशीर सहतो, उस्मान सहतो, हाजी सहतो सां गॾु गॾु असांखे कनाइनि पिया ऐं शफ़ी सहतो साहब बि कनाइनि पिया। वॾी महिरबानी, राति जे नसांत में तव्हांजा प्यार पहुता आहिनि ऐं तव्हांजा मोहबत भरिया पैगाम पहुता आहिनि, वॾी महिरबानी। सलाम चयनि असांजे स्टूडियो इंजीनियर शाह नवाज़ ख़ासि कई लिखे, वॾी महिरबानी शाह नवाज़, वालेकुम सलाम चयो पियो।

सतो उस्मान सतो हाजी सतो गड़ असा कराइन पाया शफी सतो साहब तुझो सुनो इंतखाब है इमदाद हुसैन सिटू तंतखाब क्यों तो असा रोई रोई खिलाए उ जिनके अकेला जो थींदा

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जे तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्त सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसइलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। रात जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सेहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
4: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि, त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

भलीकार चवंदासीं रस रहाण प्रोग्राम में जेके महिरबान असां सां हाणे हाणे जुड़ी चुका आहिनि ॿुधनि पिया जी एफ एम मातली खे मातली 90.4 खे समूरन खूबसूरत समातन खे हिकु भेरो ॿीहर भलीकार चवंदासीं प्रोग्राम रस रहाण में तव्हांजा मैसेज पैगामनामा बि अचनि पिया धड़ाधड़ उन्हनि खे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं। कुनरी खां चौवन कुमार कोहली जो मैसेज पहुतो आहे। डॉक्टर अनीता चौहान, संगीता पारस ऐं पखो मोड़ खां सेठ लालचंद कोहली, वॾी महिरबानी चौवन कुमार, तव्हांजा लख थोरा पंहिंजी मौजूदगी जो भलोड़े अहसास सरपण जे लाइ। वफ़ा गुलाम रहीम बलोच झुड़बी थर पार कर खां असांखे कनाए पियो, धड़ाधड़ मैसेज करे पियो। तव्हां लिखियो त सलाम, प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे, उर्स चांडियो मिसाल जे विछड़ी वञू। बिल्कुलु आख़िर में तव्हांजो गीत ॿुधी सघंदा ऐं ज़रूरु हिन गीत ते झूमंदा मूंखे लॻे थो। ॻोठ सोराब खां निज़ामाणी खां मोहबती मंगण निज़ामाणी, नंढड़ो अहसान मंगण निज़ामाणी जो वरी मैसेज पहुतो आहे। जी मोहबती मंगण निज़ामाणी, बिल्कुलु इहो गीत आऊं ॻोल्हियां पियो, जेकॾहिं मूंखे मिली वियो त ज़रूरु प्ले कंदुसि।

प्रोग्राम जा बिल्कुल आखिरी लम्हा आहिनि। जल्दी जल्दी जेकॾहिं तव्हां मैसेज करणु चाहियो था, तव्हां चाहियो था त रस रियाण में असां शामिल थी वञो। मोबाइल खणंदा पंहिंजे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वञी करे टाइप कंदा MTA थोरी स्पेस, पंहिंजो नालो, कोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 8881 ते असांखे सेंड करे ॾियो। बिल्कुलु जल्दी जल्दी मैसेज करियो, प्रोग्राम में टाइम थोरो बचियो आहे। ख़बर ई कोन पई ॿ कलाक कीअं गुज़री विया। मतां पोइ तव्हांखे दिलि में थिए त रस रियाण प्रोग्राम में असां शामिल कोन थियासीं।

जिन जिन मेहरबानी के मैसेज करनो है जल्दी कर मैसेज कर लाइन तो उनके प्रोग्राम में शामिल कर हलूं। कदी तो मैसेज करो मोबाइल के राइट ऑप्शन में टाइप करो MTI थोड़ी स्पेस नालो गोठ जो नालो लिखी करे मैसेज 888 1 से सेंड करे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली।

0: बुड़ी 347, बट्टी 41, 200। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
0: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
0: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
0: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
1: 03125252786।
0: जी हा, 2315525786।
1: GAFM रेडियो नेटवर्क,
0: सिंध जो आवाज़।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: जेकर तवां के मैदे जी तकलीफ है, सीने जी जलन, खट्टियूं उगरायूं, भुख न लगन या बदहजमी जड़ा मसाला आहिन, त हाणे परेशान थियण जी जरूरत न आहे। इस्तेमाल करियो शिफाए मैदा कोरस, जेको मैदे जी खराबी ऐं हाज़मे जे मसलन लाइ आज़मूदा ऐं फ़ाइदेमंद कोरस आहे। शिफाए मैदा कोरस मिलण जो हंधु हराचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राब्ते जे लाइ फोन करियो 0326638 ऐं 0312024001287। शिफाए मैदा कोरस, सेहतमंद मैदो, सेहतमंद जिंदगी।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

बची तुझी निगाहुन खां काडे वन्या सोह तुझी सजन की बयां मां कयां तुखे हूर परी या बियो कुछ चवां चंड तुझे हुसन जी खैराता दस्तो खे भला चंड की मां चवां सोह तुझी सजन की बयां मां कयां तुखे हूर परी या बियो कुछ चवां।

अच्छा तो गद जी, अदनान समी खान जी आवाज में ही प्यार भरो एहसास एंजॉय क्यों बनंदा रहो जी एफ एम नेटवर्क

बिल्कुल प्यार में जॾहिं माण्हू को पागल थींदो आहे त हुन खे इहे ई कैफ़ियतूं महसूस थींदियूं आहिनि। तमामु ख़ूबसूरत रोमांटिक जुगलबंदी अदनान समी खान ऐं आशा भोसले जी हुई। पाकिस्तानी फिल्म सरगम सैयद नूर जी डायरेक्शन हेठि इहा चई।

सच पुछो त मूंखे पाण अवां जी फोन कॉल जो इंतज़ारु रहंदो आहे। कॉल असां न हींअर बि कंटिन्यूसली हलनि पियूं, लेकिन प्रोग्राम जे पैटर्न फॉर्मेट मूजिब असां अवां सां ॻाल्हि ॿोल बि करणु चाहींदा आहियूं। ऐं काफ़ी सारा दोस्त उहे आहिनि जेके मुसलसल प्रोग्राम खे ॿुधी रहिया हूंदा आहिनि, ट्रैक्स खे म्यूज़िक खे इंजॉय करे रहिया हूंदा आहिनि, असांजूं ॻाल्हियूं बि बर्दाश्त करे रहिया हूंदा आहिनि। प्रोग्राम दिलि जी ॻाल्हि में हर कोई दोस्त पंहिंजे दिलि जी ॻाल्हि चवणु चाहींदो आहे, ऐं सभिनी जो मैसेज त प्यार ऐं मोहबत जो हूंदो आहे, पर तंहिं हूंदे बि असांजे दिलनि में किथे न किथे का सनी सुकी, का कंहिंजे लाइ का ख़लिश, का रंजिश का हूंदी आहे। हुन जो सबबु केरु थो बणिजे, सदाई असां रुठल हुजूं, कॾहिं असां बि कंहिंखे परचाइण जी कोशिशि कयूं, कॾहिं को अव्हां खे। ऐं रुसण परचण जी इहा रीत पंहिंजनि सां ई हूंदी आहे, को रोड वेंदे, राह वेंदे, रस्ते वेंदड़ खां कॾहिं को रुसंदो बि न आहे।

प्रोग्राम में मुझे आया वहां जो साथ हूं दो है नाए सवा नाए का वडी वेदे करे रात 11 बजे तई ए घणे भांगे असा उन में आवाज जो फरमाइश भी पूरी करने की कोशिश करता हूं ए फोन कॉल्स अटेंड करता हूं ए फोन कॉल अटेंड करने लाई डेफिनेटली आवाज असा के कॉल करदा है असा जो लाइव कॉलिंग नंबर है 03000113488 इन ते आवा मैसेज पैगाम पे वॉइस नोट भी उमाने सको था ऐसा गरुगर एस एम एस करने लाइ 888 इन मैसेज भी मोकले सको था।

जॾहिं लफ़्ज़ अव्हां जो साथ न ॾियनि तॾहिं दिलि जी ॻाल्हि अखियुनि सां बयान थींदी आहे ऐं अखियूं दिलि जी ॿोली ख़ूब वाक़िफ़ हूंदियूं आहिनि, छाकाणि त अख खे दिलि जो आइनो बि चयो वियो आहे।

ॼाण त मोहबत जी इब्तिदा या आगाज उहा थींदी अखियुनि खां आहे। इंसान जे पूरे पार्ट ऑफ द बॉडी में जेको इम्पॉर्टेंट हिसो हूंदो आहे उहो हूंदो आहे इंसान जो चेहरो, ऐं चेहरे में बि जेकॾहिं असां वधीक इम्पॉर्टेंट शइ खे ॻोल्हण जी कोशिश कंदासीं त उहा हूंदी आहे अख, ऐं अख खे शायरी जे ज़ुबान में दिल जो आइनो सॾियो वियो आहे। असांजे दिल में छा आहे उहो असां कंहिंजी अख खां अंदाज़ो लॻाए सघंदा आहियूं। जेकॾहिं उहो डोडा ईअं फाड़े करे जेकॾहिं कंहिंखे ॾिसी रहियो आहे त समझंदा आहियूं त इहो कावड़ जो इज़हार करे रहियो आहे, उठल आहे, हुन जे दिल में शायदि का नफ़रत आहे या कावड़ आहे। ऐं जेकॾहिं उहा निमाणी अख, झीरवी अख करे अधु बूटे करे कंहिंखे ॾिसंदो आहे निगाह अंदाज़ सां, त असां समझंदा आहियूं त इन निमाणी अंदाज़ में प्यार भरियल आहे, मोहबत आहे। पर जेकॾहिं उन अख खे अदाउनि सां हेॾे राइट खां लेफ्ट, यानी कि खॿे खां सॼे, सॼे खां खॿे फेराईंदो आहे त उन में शरारत लिकल हूंदी आहे। जेकॾहिं निगाहूं हेठि करे छॾबियूं आहिनि त उन में हया हूंदी आहे। निगाह जेकॾहिं उहा मथे वेंदी आहे आसमान ॾांहुं दीद हूंदी आहे त उन में दुआ हूंदी आहे। ऐं जेकॾहिं कंहिं चयो शायद त निगाह जॾहिं फेराए छॾिजे, को कंहिंखां मुंहुं मोड़े छॾिजे त उहा मोहबत करण लाइ, करण वारे लाइ मौत हूंदी आहे। वक़्तु थियो आहे हिकड़े नंढड़े ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं। ॿुधंदा रहो दिलि जी ॻाल्हि आबिद चौहान सां गॾु जी एफ एम नेटवर्क ते।

0: जेकॾहिं तव्हां बवासीर जी तकलीफ़, रतु अचणु, सख़्तु सूर, वेहण या हलण में तकलीफ़ जहिड़नि मसलनि में मुबतला आहियो ऐं ऑपरेशन खां डिॼो था, त हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। इस्तेमाल करियो निजात बवासीर कोरस। बवासीर खूनी हुजे या बादी, आराम लाइ आज़मूदो कोरस। निजात बवासीर कोरस मिलण जो हंधु हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम जो 5 वॻे ताईं, हमज़ा दवाखाना, सोनहरी मस्जिद, रेलवे फाटक, मातली। राबते जे लाइ फोन करियो 0302-3636-879 ऐं 0312-3401-287। सुकून, एतमाद ऐं सिहतमंद ज़िंदगीअ ॾांहुं क़दम।
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक, मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल, नोतकाणी चौक, मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि? त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
5: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
6: पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
4: जी हा, 2315525786।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।